नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 25 सेकेंड्स में प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है बटेर पालन आय का साधन, आलेख एवं वाचन सुनीता अग्रवाल का।
2: की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे बटेर पालन पर, क्योंकि बटेर पालन करना बहुत ही आसान है, साथ ही इसकी बढ़वार तेजी से होती है और मुनाफा भी अधिक होता है। तो आइए जानें विस्तार से कि बटेर पालन से न केवल अच्छी कमाई की जा सकती है बल्कि बटेर की घटती संख्या को भी रोकने में मदद की जा सकती है। हमारे देश में व्यावसायिक मुर्गी एवं बत्तख पालन के बाद बटेर पालन का व्यवसाय तीसरे स्थान पर आता है। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं और उनमें से अधिकांश भारत की जलवायु में पाली जाती हैं। इन नस्लों में कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडे उत्पादन के लिए किए जाते हैं। किसान अपने उत्पादन उद्देश्य के अनुसार ही किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं, जैसे वोल वाइट या मांस उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, या अमेरिकी नस्ल की बटेर है। वैसे ही है वाइट वेस्टेड या भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है, जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। और अधिक अंडे देने वाली नस्लें हैं ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश वाइट, मंचूरियन, गोल्डन फिरॉन एवं टक्सेडो इत्यादि। बटेर पालन में आवास की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि किसान व्यवसायिक बटेर पालन करना चाहते हैं तो आवास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आवास में बिछावन प्रणाली और पिंजरा विधि से बटेर पालन किया जा सकता है। इसमें पिंजरा विधि का उपयोग अधिक होता है और अधिक लाभ और सुविधाजनक भी होता है। 2 सप्ताह की आयु के बाद पक्षियों को पिंजरे में रखा जा सकता है। 3x2.5x1.5 वर्ग फीट आकार वाले पिंजरे में इन्हें रखना उचित रहता है। व्यवसायिक अंडों के लिए कई पिंजरे रखे जाते हैं और प्रत्येक पिंजरे में 10 से 12 अंडे देने वाले बटेर को रखा जा सकता है। आवास के अंदर ताजी हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चूजा आवास में खिड़कियां और रोशनदार का होना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि एक समान रोशनी और हवा चूजों को मिलती रहे। बटेर के चूजों को पहले 2 सप्ताह तक 29 घंटे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है और गर्मी पहुंचाने के लिए बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। 1 दिन के चूजे के लिए बिजली ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में 950 फारेनहाइट से बढ़कर 50 फारेनहाइट प्रति सप्ताह कम करते रहना चाहिए। बटेर पालन में आहार व्यवस्था का होना भी जरूरी होता है। 1 किलो बटेर का उत्पादन करने के लिए 2 से 2.5 किलो आहार की ज़रूरत होती है, ताकि अच्छे शारीरिक विकास व स्वास्थ्य से उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला संतुलित आहार खिलाना बहुत ही जरूरी होता है। एक व्यावसायिक बटेर को प्रतिदिन 20 से 35 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है और एक नवजात शिशु बटेर के राशन में लगभग 27% प्रोटीन तथा वयस्क के लिए 22 से 24% प्रोटीन का होना जरूरी है। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे देती है और मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है और वसा की मात्रा भी कम होती है। अन्य पशुपालन के साथ साथ बटेर पालन एक व्यवसाय करना और इसे आगे की बढ़ाया जा सकता है। बटेर जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में ही अंडे देना शुरू कर देती है तथा बटेर बाजार में 6 से 5 सप्ताह बाद ही बेचने के लायक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे पक्षियों की तुलना में बटेर रोगों के प्रति बहुत ही प्रतिरोधी हैं, इसीलिए बटेर में टीकाकरण की आवश्यकता नहीं या कम होती है। बटेर के अधिक उत्पादन एवं रोगों से बचाने के लिए अच्छी देखभाल, अच्छे आवास एवं संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है। नियमित आहार में विटामिन एवं खनिज लवण का होना भी जरूरी होता है। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर बटेर पालन की जाए तो निश्चित ही अधिक मुनाफा पाया जा सकता है। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में, बटेर पालन के बारे में आपको बता रही थी सुनीता अग्रवाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब ये आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।
3: नाइन जीरो

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटीं, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंपकर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है पराधीन सपने हो सुख नाही। संकलन एवं वाचन अनुपमा तिवारी।

0: पराधीन सपने हो सुख नहीं। तुलसीदास जी का कहना है कि जो व्यक्ति स्वाधीन नहीं होता है उसे स्वजनों से कभी भी सुख नहीं मिलता है। हमें जीवन में स्वाधीन होना चाहिए। एक मनुष्य के लिए पराधीनता अभिशाप की तरह होता है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वे सपने में भी कभी सुखों का एहसास नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति के पास सभी भोग विलासों और भौतिक सुखों के होने के बाद भी अगर वह स्वतंत्र नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए यह सब व्यर्थ होता है। पराधीनता एक मनुष्य के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। इस संसार में पराधीनता को पाप माना गया है और स्वाधीनता को पुण्य माना गया है। पराधीन व्यक्ति किसी मृत की तरह होते हैं। पराधीनता के लिए कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे स्वयं तो अक्षम होते ही हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाही, इस उक्ति का अर्थ होता है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए बना ही नहीं है। पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। पराधीन व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। पराधीनता की कहानी किसी भी देश, जाति या व्यक्ति की हो वह दुख की कहानी होती है। पराधीन व्यक्ति का स्वामी जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार उसके साथ कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह कभी भी किसी के वश में या किसी के अधीन रहने को तैयार नहीं होता। एक स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन स्वतंत्रता सेनानी का नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर कभी उसे पराधीन होना भी पड़ता है तो वो स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य, सभी को पराधीनता के कष्टों का पता होता है। जैसे एक पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसी तरह सोने के पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। सोने के पिंजरे में रहकर उसे व्यंजन पदार्थ अच्छे नहीं लगते। वह तो स्वतंत्र रूप से पेड़ पर बैठकर फल फूल खाने से सुख का अनुभव करता है। उसे स्वतंत्रता में कड़वी निबोरी भी मीठी लगती है। पक्षी को सोने के पिंजरे में खाने को तो सारी सामग्री मिलती है, लेकिन वह स्वतंत्र होकर उड़ नहीं पाता है। मनुष्य की यह विडंबना होती है कि वह अपने ही कृत्यों के कारण पराधीनता के चक्र में फंस जाता है। अगर मनुष्य को स्वाधीनता को पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पीछे हटना चाहिए। पराधीनता के समान अभिशाप कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पराधीनता एक व्यक्ति की हो सकती है, एक परिवार की हो सकती है या फिर देश की हो सकती है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कभी भी कहीं भी अपमान कर सकता है। प्रकृति का कण कण स्वतंत्र होता है। प्रकृति को अपनी स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। जब जब मनुष्य प्रकृति के स्वतंत्र स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसे अच्छी सजा देती है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका परिणाम प्रदूषण, भूकंप, भूक्षरण, बाढ़ें, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है। जब हम दो फूलों की तुलना करते हैं, एक तो उपवन में लगा होता है जो प्रकृति को सुंदरता और सुगंध प्रदान करता है, और दूसरा फूलदान में लगा होता है जो मुरझा जाता है। जो फूल उपवन में होता है खुशी से झूमता है, लेकिन जो फूलदान में लगता है वह केवल अपनी किस्मत पर रोता है। सर्कस के पशु पक्षी अगर बोल पाते तो उनसे हमें पराधीनता के कष्टों का पता चलता। वे बेचारे अपने दुखों को बोलकर भी प्रकट नहीं कर पाते। हमें कभी भी मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें पराधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति जो स्वतंत्र होकर अनुभव करता है वह पराधीन होकर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आंधियों से लड़ सकते हैं वे कभी भी पराधीनता से पराजित नहीं हो सकते। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हो सुख नाही।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में, पराधीन सपने हो सुख नाही। संकलन एवं वाचन अनुपमा तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको अनूप जलोटा के गाए चंद भक्ति गीत सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में अनूप जलोटा के गाए चंद भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है स्लिप डिस्क, कारण एवं उपचार। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर नर्मदे रांची से, और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।
1: बीमारियां अनेक तरह की हो रही हैं और सुगमता पूर्वक उसका इलाज भी किया जा रहा है। साधारणतः आजकल युवा साथी भी अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसी बीमारियां जो पहले बुजुर्गावस्था में होती थी, कमर में दर्द, पैरों में सुनापन, पैरों में झंझनाहट, इस तरह की बीमारियाँ आजकल आम हो चली हैं। ऐसे ही एक बीमारी है स्लिप डिस्क, ये रीढ़ की बीमारी है। क्यों हो जाता है, कारण क्या है, और हम सावधानियां कैसे रखें कि इन बीमारियों से हम बच जाएं, और यदि स्लिप डिस्क हो जाता है तो इसका उपचार कैसे करें, और कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखें, अपनी जीवन शैली को किस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमें कम से कम दर्द हो और हम स्वस्थ रहें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नर्मदे से। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर नर्मदे, आपका स्वागत है।
2: नमस्ते सर।
1: ये जो बीमारी है लो बैक पेन बहुत कॉमन हो गया है, क्या कारण है इसका?
2: सर अभी के समय में सबसे जो ज़रूरी है अपने लोगों का पोस्चर, शरीर का बनावट, दूसरा पोस्चर। सर किसी भी काम को हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्पाइन अपना लोगों का जो होता है वो बहुत सीधा होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ भी किए, भारी वजन कुछ उठा लिए, कॉमन सी बात है, हम लोग हर एक कोई करवट लेके नहीं उठते हैं, सोए डायरेक्ट सीधे उठ गए, जबकि ये तरीका नहीं हुआ अपना लोगों का। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग सोए हुए हैं तो किसी भी एक साइड, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, करवट लेके उठना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। दूसरा हुआ भारी वजन उठाने से बचना, बहुत लोग कुछ भी किसी भी पोजीशन में हो अपना कुछ भी उठा लिए, तो उस चीज़ से हम लोगों को बचना चाहिए। आगे झुके कभी वजन नहीं उठाना चाहिए। यदि आपको वजन भी उठाना है तो प्रॉपर वे में थोड़ा पहले घुटने के ऊपर पहले बैठ गए हल्का सा, उसके बाद उठाए, तब वो जोर अपने स्पाइन पे ना आके और वो डायरेक्ट वो घुटने पे आ गया। तो सब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया अपना लोगों का पोस्चर। पोस्चर सही ना रहने के कारण हम अपने लोगों को जो है मेन स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम आता है वो उसके कारण से आता है।
1: एक कॉमन सा शब्द हो गया है स्लिप डिस्क, तो ये स्लिप डिस्क होता क्या है, किस तरीके से ये जो डिस्क है ये स्लिप कर जाता है, आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो?
2: अपने स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो होता है वो हल्का हल्का गैप होता है, वो पूरा एकदम सटा हुआ नहीं, कार्टिलेज भी उसमें होते हैं, फाइब्रस भी होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसमें गैप होता है। कोई भी चीज़ है तो वो अपने जगह तक जब तक है या जगह पे जब तक है तब तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन वो जब अपना जगह छोड़ता है तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ समस्या वो आपको उसमें आता ही है। तो स्लिप डिस्क का मेन रीज़न हुआ जो बैंडिंग होके काम किए या फिर वजन उठाए, उसके कारण होता क्या है, या तो गैप स्पाइन का बढ़ गया या फिर कम हो गया। बढ़ गया फिर भी प्रॉब्लम है, घट गया फिर भी प्रॉब्लम है।
1: जो गैप है
2: हर एक गैप का अपना एक दूरी बना हुआ है, लेकिन अपना लोग के गलत तरीके के कारण या काम करने के कारण वो गैप जो है घट जाता है, और गैप घट के अपना स्पाइन जो होता है वो अपना जगह छोड़ देता है। नॉर्मली एक तरह से बोले हम लोग तो वो हो गया अपना लोग का स्लिप डिस्क, वो जो हुआ वो बीमारी हो गया। अब जो है उसमें पोजीशन चेंज हुआ, उसके पास से जो आपके नस पास किए तो कुछ नहीं, तो उसको तो डैमेज करेगा ही करेगा। तो उस कंडीशन में जो अपना लोग का पैर में झिनझिनी हो गया या फिर कमर में झिनझिनी हो गया या फिर सूनापन हो गया या फिर पैर भारी लगना हो गया या फिर कभी कभार देखते हैं अपना लोग की कमर में हल्का स्वेलिंग, बहुत रियल केस में स्वेलिंग, लेकिन मेन झिनझिनी, पैर का फटना, बहुत ज़्यादा पेन होना, उसके बाद सुन हो जाना, सूनापन, मतलब उसमें यदि आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब ये हो क्या रहा है।
1: इससे जो व्यक्ति की दिनचर्या है, रोज़मर्रा की दिनचर्या है, वो बहुत प्रभावित हो जाती है। चलना फिरना, घूमना फिरना, और काम करना ये बहुत प्रभावित कर देता है। व्यक्ति अपने आप को लाचार और असहाय महसूस करने लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की स्लिप डिस्क हो गई हमारे गलत आदतों के कारण, गलत तरीके से उठने बैठने और वजन उठाने के कारण, यदि इस तरह की बीमारी हमें पता चल जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि आप स्लिप डिस्क की बीमारी से आप ग्रसित हो रहे हैं, तो क्या इलाज है डॉक्टर साहब, उपचार किस प्रकार करें?
2: सबसे पहले तो एक है कि आप डायरेक्ट फिजियो के पास जा सकते हैं, अपने नज़दीकी आसपास कहीं भी आपके अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं, या फिर न्यूरो और ऑर्थो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो हुए या न्यूरो के अपने जो कोई भी डॉक्टर हैं आसपास में, तो उनसे भी सलाह लेके हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि उन लोग इस केस में फिजियो के पास रेफर करते ही करते हैं। मेन तो है इसका कि अपना पोस्चर को पहले मेंटेन करें। सबसे पहले हम लोग पोस्चर के बारे में इसके लिए बताते हैं। दूसरा हो गया एक्सरसाइज। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट इसमें IFT, SWD या फिर ट्रैक्शन का भी यूज करते हैं। ट्रैक्शन का यूज

0: हम लोग थोड़ा कम ही करें, क्योंकि वो भी एक तरह से बोलें तो स्पाइन को बढ़ाता ही है, खींचता है, और उसका भी गैप बढ़ाता है, तो ट्रैक्शन से हम लोग बचाते हैं। बैक का पूरा एक्सरसाइज इसमें करवाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हो गया कि हॉट वाटर बैग कंपलसरी, इसमें गर्म पानी डाल के हॉट वाटर बैग से कम सुबह में 15 मिनट और शाम में 15 मिनट पहले हम लोग सेंकें। तेल मालिश एकदम हम लोग मना करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग का कहाँ पे प्रॉब्लम है या कहाँ पे नस को वो दाब रहा है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसमें मसाज को बंद करवाते हैं। मसाज के जगह पे आप सेंक सकते हैं। उसके बाद हो गया बैक लोअर का जितना भी एक्सरसाइज है इसमें सारा हम लोग करवाते हैं, जैसे पैर उठाना, उसको हम लोग SLR भी बोलते हैं। उसके बाद पिल्लू प्रेस, एड़ी से दबाना और घुटना से दबाना, वो दोनों आ गया। उसके बाद कैट एंड कैमल पोस्चर, जो बोलते हैं अपना लोग, मतलब चुकु मुको, वो भी मना करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें हम लोग आगे बैंड होने के लिए हम लोग मना करते हैं,
1: मतलब झुक कर कोई भी काम नहीं करें।
0: नहीं, आगे झुक के कोई काम इसमें नहीं
1: जी,
0: और आगे झुक के वजन भी नहीं उठाना है इसमें
1: जी। डॉक्टर साहब, शुरुआती में जो चिकित्सक होते हैं वो दवाइयाँ गोलियाँ देते हैं, दर्द निवारक दवाइयों से हमें आराम महसूस हो जाता है, लेकिन ये जो दर्द की गोलियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कहीं ना कहीं परेशान जरूर करता है, कुछ ना कुछ प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ जाता है। इस तरह की दवाइयों का हम सेवन ना करें, और जो बाज़ार में जैसा आपने बताया मालिश नहीं करें, तरह तरह की बाज़ार में मालिश की दवाइयाँ उपलब्ध है और लोग उसका सेवन करने लग जाते हैं, उस दवाइयों को लेकर उसको मालिश करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे और अपने ज़िंदगी को किस प्रकार व्यवस्थित करें?
0: लोग जागरूक हैं, ये भी नहीं बोल सकते कि लोग नहीं समझते या नहीं जानते। अभी के समय में लोग इतना एडवांस जरूर हो चुके हैं कि किसी भी बीमारी में उनको पता है कि हमको कहाँ पे किसके पास जाना है। यदि नस से संबंधित कोई बीमारी आया तो उनको पता है कि हमको न्यूरो के पास जाना है। यदि हड्डी से संबंधित कोई बीमारी आया तो उनको पता है कि हमको ऑर्थो के पास जाना है। हम लोगों का जो रोल होता है वो दोनों से हम लोग का बंधा हुआ है, न्यूरो से भी है, ऑर्थो से भी है। दूसरा हुआ सर इसमें पेन किलर का ऐसे भी हम लोग 30 और 35, 40 के बाद हम लोग मना करते हैं। पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, हार्ट में अपना लोग का बहुत ज़्यादा असर वो डालता है। अभी के समय में 650 mg, 700 mg डोलो या कोई और भी पेन किलर वो लोग होता है कि पर डे खाते हैं, आराम से रहे, चलो भाई कम हो गया, लेकिन वो चीज़ है ज़्यादा समय के लिए आपके साथ नहीं है। जब तक उसका असर है तभी तक आप ठीक हैं, उसका असर आपका ख़त्म हुआ, आप अपने वर्क में लौटे, आप अपना दिनचर्या में लौटे, फिर आपका पेन स्टार्ट हो गया। तो इसमें सबसे बेहतरीन हम लोग फिजियो को मानते हैं। फिजियो में भी है कि मेनली कुछ कुछ एक्सरसाइज, कुछ मशीन, ट्रैक्शन हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते, बस एक स्टार्टिंग 1 week 2 week, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 week, मतलब 21 दिन से ज़्यादा हम लोग ट्रैक्शन भी नहीं देते। एक्सरसाइज में थोड़ा सा यही है कि करने पर थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है, टाइम टेकन है।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में, स्लिप डिस्क के बारे में आपको बता रहे थे डॉक्टर नर्मदे रांची से, और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: نمی
1: आह श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य 3-दिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो सन्देश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तरप्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 वादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रता

0: सम्पूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदाई ओकिमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
0: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship

8:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू। खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी की, संयोजन श्री एस के लाल की। 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 10 बजे हिंदी में समाचार। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी मुंबई। 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र की जनता से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे राज्य केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर सदाबहार नगमे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर प्रादेशिक समाचार, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 3:30 पर नाट्य तरंग, 4 बजे प्रादेशिक समाचार होगा हमारे राज्य केंद्र से, 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 5 बजे प्रादेशिक समाचार, 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी थोड़ी जानकारी आपको दे दें। शाम 5:35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रमों का युवाणी, जिसमें आज आप सुनेंगे युवाओं में नशे की लत और युवा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इस विषय में चर्चा की जाएगी। 6:00 प्रादेशिक समाचार का समय होगा, जिसे रिले करेंगे हम राज्य केंद्र से। 6:02 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा खेती बारी। 6:30 पर आईसीसी वेमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप मैच का प्रसारण सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे राज्य केंद्र से। 7:15 पर एक बार फिर से आईसीसी वेमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर मैच का प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और 10:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और हमेशा की तरह 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बच्चों को संबोधित कार्यक्रम बाल सभा। श्रोताओ नमस्ते, आप सुन रहे हैं बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। सबसे पहले उन सभी बच्चों का स्वागत है जो बाल सभा के कार्यक्रम सुन रहे हैं। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें।

बच्चों, खेलना कूदना तो बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी और मेंटल स्थिति के लिए भी। और विडम्बना यह है कि आजकल खेलने की जगह ही नहीं है। एक बात और है दोस्तों, कहते हैं माता पिता जीवन के पहले गुरु होते हैं। वे हमें केवल जन्म ही नहीं देते बल्कि सही गलत का ज्ञान, संस्कार और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। इसलिए बच्चों का अपने माता पिता की बात मानना केवल एक आदत नहीं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की नींव है। माता पिता अपने बच्चों से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। वे हर निर्णय बच्चों की भलाई को ध्यान में रखकर लेते हैं। जब वे समय पर पढ़ाई करने, पौष्टिक भोजन खाने, मोबाइल का सीमित उपयोग करने, अच्छे मित्र चुनने या बड़ों का सम्मान करने की सलाह देते हैं तो उसके पीछे उनका वर्षों का अनुभव और बच्चों के प्रति स्नेह छिपा होता है। आज की दुनिया में बच्चों के सामने कई तरह के आकर्षण और चुनौतियां हैं। ऐसे समय में माता पिता का मार्गदर्शन एक मजबूत सहारा बनता है। जो बच्चे अपने माता पिता की बात ध्यान से सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं वे जीवन में अधिक अनुशासित, आत्मविश्वासी और सफल बनते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है बच्चों की राय नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बात पर अलग विचार हो तो उन्हें शांति से सम्मान के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छे परिवार की पहचान यही है कि वहाँ संवाद, विश्वास और सम्मान बना रहे। याद रखिए, माता पिता की सीख वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे रास्तों को सही दिशा दिखाता है। अब आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

बाल सभा कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाजत दे। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको गायन सुनवा रहे हैं, राग है रामकली और कलाकार है वसुंधरा कोमकली।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको गायन सुनवा रहे थे। राग था रामकली और कलाकार थी वसुंधरा कोमकली। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
9: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान

0: किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,63,73 लाख लोग हुए लाभान्वित। राज्य में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 61 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। झारखंड में तेज होगी मॉनसून की गतिविधि, रांची समेत 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियन की विजेता बनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर

0: योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,73,00,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 39.82 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
1: झारखंड में 39,82,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। इसी तरह मतलब अनेक मुद्दों पर जिस तरह झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी सोरेन जी की जो सरकार है और उनको यहाँ पर बहुमत मिला, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो झारखंड अलग बनाने के लिए शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भी नया झारखंड बना है। या ट्राइबल की संख्या बहुत बड़ी है, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है ये सभी जाति वर्गों में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है।
0: राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत राज्य के 61 लाख से अधिक और रांची में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। वहीं देवघर जिले में भी पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। उधर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3,97,521 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में 2.25 लाख से अधिक बच्चों को खुराक दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 16 नए संक्रमित मिले हैं। गंभीर मरीजों को जमशेदपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में जांच, उपचार और जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों से तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की गई है। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कल समीक्षा बैठक की। उन्होंने जसीडीह, देवघर और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर्स की संख्या बढ़ाने, अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने तथा सीसीटीवी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने संभावित भगदड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में भाजपा महानगर ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया।
3: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की मूल भावना की हत्या करने का अपराध था। तो एक ऐसा अपराध जिसको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखें और फिर किसी भी शासक को इस देश में ऐसा करने की हिम्मत न हो, इस दृष्टि से आपातकाल के काला अध्याय का स्मरण करने का ये कार्यक्रम आयोजित है।
0: धनबाद जिले में अवैध खनन और नदियों के किनारे ओवर बर्डन यानी ओबी डंपिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला

0: खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने संयुक्त टीम को पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
1: दो तीन नदियां हैं जिस पर लगातार शिकायतें आ रही थी, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो वो सब नदियों का थरो इंस्पेक्शन के लिए एक टीम का गठन किया गया है कि अलोंग द लाइंस ऑफ द रिवर किसी भी तरह की ओबी डंपिंग या माइनिंग किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो, और ऐसा होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई संबंधित एरिया के लिए हो।
0: केंद्र प्रायोजित स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर 1 जुलाई को राज्य स्तरीय समिति की बैठक आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में पुलिस मुख्यालय से एडीजीपी, आईजी अभियान सह नोडल पदाधिकारी, LWEUE, आईजी प्रोविजन, वित्त विभाग के सचिव और झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता शामिल होंगे। झारखंड में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत 20 जिलों में आंधी, तेज हवा और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 जून से 1 जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। फिलहाल राज्य में सामान्य से 62% कम वर्षा दर्ज की गई है। रांची के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की बालिका फुटबॉल टीम ने 65वीं सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की कांके प्रखंड स्तरीय अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल, अनुशासित प्रदर्शन और बेहतरीन टीम भावना का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में आत्मविश्वास और उत्कृष्ट तालमेल का प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अटकलों पर विराम, चंपत राय और मिश्र का ट्रस्ट से इस्तीफा। हिंदुस्तान ने लिखा है, चंपत राय समेत 2 ने पद छोड़ा। प्रभात खबर की सुर्खी है, नीट के बाद महाराष्ट्र TET का भी पेपर लीक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईरान का बहरीन में अमेरिका नौसेना बेस पर ड्रोन हमला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,73,00,000 लोग हुए लाभान्वित। राज्य में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 61,00,000 से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। झारखंड में तेज होगी मॉनसून की गतिविधि, रांची समेत 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियन की विजेता बनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ही फिल्म के कुछ गीत सुनवा रहे हैं और वो फिल्म है जॉनी मेरा नाम। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

श्रोताओ, हिंदी सिनेमा की एक ऐसी सदाबहार फिल्म थी ये, जिसमें रोमांच, रहस्य, संगीत, अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में हमेशा अपनी जगह बनाई रखी और आज भी बनाए रखी है। जॉनी मेरा नाम, जो रिलीज हुई थी 1970 में। जॉनी मेरा नाम का निर्देशन किया था विजय आनंद ने और फिल्म निर्माता थे गुलशन राय। यह दौर की, उस दौर की ये सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म फिल्मों में शामिल थी और एक क्लासिक मूवी आज भी मानी जाती है। मुख्य कलाकार देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ और आईएस जौहर थे।

फिल्म की कहानी दो भाइयों की है जो बचपन में बिछड़ जाते हैं। बड़ा होकर एक भाई पुलिस अधिकारी बनता है और अपराधियों को पकड़ने के लिए जॉनी नाम से गुप्त पहचान अपनाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रेखा से होती है जो इस फिल्म की हीरोइन थी और दोनों के बीच प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। रहस्य, रोमांच और भावनाओं से भरी यह कहानी अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है। यह फिल्म 1970 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी। देवानंद की स्टाइल, संवाद और स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शक खूब पसंद करते थे। हेमा मालिनी की खूबसूरती और अभिनय ने भी फिल्म की लोकप्रियता में बड़ा योगदान दिया। विजय आनंद की शानदार निर्देशन शैली, खासकर गीतों का फिल्मांकन तकनीक आज भी फिल्म संस्थानों में सराही जाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सम्मान और संस्कार से बड़ा कोई आभूषण नहीं और माता पिता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है विनम्र बने रहना। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करता है वह हर जगह आदर पाता है। धन और पद से इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने संस्कार और अपने व्यवहार से महान बनता।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आपको मौसम का हाल बता दें। अगर आज के टेम्परेचर की हम बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज ह्यूमिडिटी रहेगी 66% तक। आज सूर्यास्त का समय होगा 6:45 पर। कल सूर्योदय का समय होगा 5:08।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
4: फसा, अनजान ऐप से बचें।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। आज ज्ञान विज्ञान में हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। जो प्रकृति का एक अनमोल उपहार है वो है सौर ऊर्जा। सूरज हर दिन बिना किसी भेदभाव के पूरी पृथ्वी पर अपनी रोशनी बिखेरता है। यही रोशनी और गर्मी हमारे जीवन का आधार है। पौधों में भोजन बनाने से लेकर मौसम के संतुलन और बिजली उत्पादन तक सूर्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय और असीमित ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन एक दिन समाप्त हो सकते हैं और इनके उपयोग से प्रदूषण भी बढ़ता है, लेकिन सौर ऊर्जा से न तो धुआं निकलता है, न ही पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचता है। इसलिए यह भविष्य की सबसे सुरक्षित ऊर्जा मानी जाती है। इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जान लें। घरों की छत पर सोलर पैनल लगा करके बिजली बनाई जा सकती है। सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म किया जा सकता है। सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर लालटेन, सोलर पंप गांवों में और शहरों में उपयोग किए जा रहे हैं। खेतों में सिंचाई के लिए भी सोलर पंप किसानों के डीजल और बिजली के खर्च को कम करते हैं। आज कई स्कूल, अस्पताल और सरकारी भवन भी सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। सरकार भी इसमें भरपूर सहयोग दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सौर ऊर्जा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाता है। पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सहायता और सब्सिडी दी जा रही है। किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पंप लगवाने में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मदद की जा रही है। देश भर में बड़े बड़े सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि स्वच्छ बिजली का उत्पादन बढ़ सके। यदि हमारे घर की छत उपयुक्त है तो सोलर पैनल लगवाने पर आप विचार कर सकते हैं। बिजली का सोच समझकर उपयोग करें और दूसरों को भी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करें। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित बना सकती है।

श्रोताओं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसमें पौष्टिकता भरपूर मात्रा में ही होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि करेली में कड़वाहट बहुत होती है, तो इसे दूर करने के क्या उपाय हैं? यदि आप भरवा करेले बना रहे हैं तो करेले को छील कर बीज निकाल कर करीब 30 मिनट के लिए उसे छाछ में भिगो करके रख दें। यदि आप करेले की सब्जी बनाने जा रही हैं तो इसे काट कर छाछ में भिगो दें और उसके बाद निकाल करके साफ पानी से धो करके इसे बनाए, कड़वाहट एकदम गायब हो जाएगी। नींबू के रस में लेकर के करेले के कड़वाहट कम कर सकता है अगर उसमें नींबू का रस डाला जाए तो। एक बड़े बर्तन में पानी भरें, उसमें करेले के टुकड़े को डालें, 2-3 नींबू का रस निचोड़ दें। 15 से 20 मिनट तक इसे निकाल करके छोड़ें और फिर से साफ पानी में धो लें और फिर सब्जी बनाएं। इससे भी कड़वाहट दूर होती है। एक और तरीका है, करेले को काट कर उस पर नमक छिड़क दें और नमक को कम से कम 10 से 15

मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर ले और उसे छोड़ दे। 10 से 15 मिनट के बाद उसमें से हल्का पानी निकलेगा और फिर इसे साफ पानी में धो करके और सब्जी आप बनाएं तो देखिए कड़वाहट कैसे दूर होती है। एक और तरीका है, कम समय में अगर आपको कड़वाहट दूर करनी हो तो अब उसके लिए क्या करना है, पानी उबालें, चुटकी भर नमक डालें और कटे हुए करेले को उबलते हुए पानी में डाल दें, 4 से 5 मिनट तक उबलने दें। फिर इसे छान लें, पानी सूखने के बाद पकाएं, तब देखिएगा इससे भी कड़वाहट दूर होती है। एक और तरीका है, आधा कप सिरका लें, उसमें आप 1 कप पानी डालें, 2 चम्मच चीनी डालकर मिलाएं। इस मिश्रण में करेले के टुकड़े को डाल करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें और करेले के मिश्रण को निकाल कर पानी से अच्छी तरह से धो लें और फिर इसको खाते समय ही पकाएं, मतलब जैसे खाना हो आधा घंटा पहले से बना लें, तो देखिएगा उसमें भी कड़वाहट दूर होती है। आप इस तरीके से बना करके बच्चों को भी खिला करके देख सकते हैं कि क्या बच्चे खाते, उन्हें पसंद आती है कि नहीं।

श्रोताओं, चलते चलते बस यही कहना है कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। कार्यक्रम जोहार पलामू से अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो चलिए आगाज करते हैं फिल्म जख्म से, आवाज अलका याग्निक की है।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से 10:10 पर। विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे मुंबई केंद्र से 10:55 पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र की जनता के नाम मन की बात कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क

0: एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मुज के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की युदाई ओकिमोतू को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीन ताइपे के सू ली यांग से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles Patrick Hamini today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
3: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyana, Akashwani News, Delhi.
2: The Prime Minister reached Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hamini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani at Doordarshan Network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar this evening. This new initiative is aimed at improving healthcare tracking and welfare accessibility for families. Prime Minister Narendra Modi and Defence Minister Rajnath Singh paid tributes to India's former Prime Minister P.V. Narasimha Rao on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi remembered former Prime Minister for his enduring contributions to India's progress during a critical phase of the nation's history. He said that Mr. Rao earned recognition as a naval administrator and was also a distinguished scholar with immense knowledge and a deep understanding of India's diverse culture. The U.S. military said it struck multiple targets in Iran for the second consecutive day at the direction of President Donald Trump as a fragile ceasefire came under renewed strain. In a post on social media, U.S. Central Command said that American military aircraft targeted Iranian military surveillance infrastructure, communication systems, air defense sites, drone storage facilities and mine layer capabilities in response to an attack on a merchant vessel on Friday. Meanwhile, Iran's military spokesperson Ibrahim al-Fikr stated that Iran also targeted U.S. infrastructure with missiles and drones in Kuwait and Bahrain. In a social media post, al-Fikr claimed that Iranian forces struck 8 U.S. military sites and related infrastructure, including Ali al-Salem Air Base in Kuwait and facilities associated with the U.S. 5th Fleet in Bahrain. The India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for a very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The weather agency has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Andhra Pradesh, East Rajasthan, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Maharashtra till tomorrow. India's Kidambi Srikant advanced to the men's singles final of the US Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikant defeated Japan's Yudai Ukimoto 22-20, 15-21, 21-19 in a hard-fought semi-final. He will face Su Yi Yang of Chinese Taipei in the final. In the FIFA World Cup, DR Congo created history by reaching the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after defeating Uzbekistan 3-1 in Group K clash at Atlanta Stadium this morning. Yohan Visa scored twice in the second half while Fiston Mayel added another goal to seal the victory. In another Group K fixture, Portugal and Colombia played out a goalless draw at Miami Stadium in Florida this morning. In the round of 32, Portugal will face Croatia in Toronto on Friday. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद. श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी. श्रोताओं, यहां आप सुन सकते हैं अपनी फरमाइशी गीतों को, हमें अपने प्यारे प्यारे मेल्स भेजकर. तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी. हमारा ईमेल आईडी है ipradio.delhi@gmail.com. तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोताओं द्वारा भेजी गई फरमाइश का ये पहला गीत.
5: जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे.
6: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है.
5: जी जी जी.
6: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया? या नहीं, आप नहीं, शंकर जी के सानिध्य में रहे कैसे?
5: बस
6: क्या?
5: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
6: अच्छा,
5: तो मुझे काम

0: तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई
1: दिक्कत नहीं
0: परेशानी नहीं
1: थी।
0: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
1: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
0: लगभग
1: रच
0: दो
1: ली
0: ढाई
1: थी?
0: सौ गीत मैंने लिखे थे,
1: अच्छा।
0: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या।
1: बिल्कुल।
0: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
1: अच्छा।
0: और कहा कि हसरत मियाँ ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ। ये उनके वर्ड थे।
1: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
0: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस
1: हाँ
0: घर देख लेते थे तो उसमें
1: उसमें
0: खुश हो
1: भी
0: जाए।
1: ऊर्जा आ जाती थी, एक
0: हाँ लगता
1: मोटिवेशन
0: था,
1: मिलता था
0: मोटिवेशन
1: कि
0: होता
1: कभी
0: था
1: हमारा भी ऐसा
0: कि
1: घर
0: कभी हमारा भी होगा।
1: होगा।
0: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहाँ का एक अलग ही चलन था, वहाँ एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे क्यों
1: कौन
0: नहीं,
1: देता
0: कौन
1: था?
0: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
0: हो
1: साहब के
0: सकता
1: प्रति
0: है,
1: ना, इस
0: हो सकता
1: दीवानगी
0: है,
1: में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
1: जी।
0: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
1: जी
0: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए।
1: जी
0: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
1: जी खैर, ये तो
0: कहीं ना
1: आप
0: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा।
0: उनके जैसा हो सकता है,
1: जी
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि
0: जी
1: आपने उनको अपना उस्ताद माना, हजरत
0: जी जी
1: साहब
0: जी,
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
0: जी
1: है ना
0: जी
1: सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
1: जी
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं नहीं आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी
0: भैया
1: जी
0: बताइए।
1: क्योंकि
0: चलिए।
1: ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की,
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के, वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
1: जी,
0: तो।
1: जी, जी, जी।
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही है कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
1: जी, जी।
0: तो ये सफर कैसा रहा? किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
0: अच्छा।
1: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
0: अरे वाह।
1: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
0: अच्छा।
1: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
0: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
1: वो तो
0: शानदार और लेजेंड से थे
1: उनका
0: वो
1: तो
0: तो।
1: क्या कहना
0: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी।
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: तो मंदाकिनी जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: जी।
0: पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं
0: तो
1: से सीखा।
0: वाला थे किशोर
1: बहुत बहुत। और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी?
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी।
0: विजय त्यागी।
1: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया। और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे। तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
0: अरे क्या बात है।
1: और उसी में उन्होंने की।
0: ये होते हैं महान संगीतकार। और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही था?
1: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था। और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार।
0: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
0: अच्छा, कौन सा?
1: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया। और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
0: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है। और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं।
1: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
0: अच्छा।
1: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा

0: रिलीज हुआ,
1: हाँ
0: और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे विपिन भाई रेशमिया,
1: अच्छा
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, दो तीन पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो है ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, ओके,
1: हाँ
0: लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था,
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या।
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी जी
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया। हाँ।

0: बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो हटके
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई।
1: बन गई।

0: गीतकार भी थे।
1: इसमें समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे
0: एक
1: और
0: आपका
1: मैं
0: गीतकार।
1: भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा,
0: पर
1: लेकिन
0: ये
1: मैं
0: गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है, और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेशी ने उसको संगीत में
1: बहुत
0: ढाला है,
1: सुंदर।
0: और
1: इसमें
0: पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इस फिल्म
1: सबसे
0: का।
1: बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा,
0: जी
1: क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने
0: बहुत
1: उनके
0: बड़ी बात है,
1: दिमाग
0: बहुत
1: में
0: बारीक
1: डाली,
0: काम था
1: बहुत
0: ये, बारीक
1: बारीक
0: काम
1: काम
0: था।
1: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
0: बिल्कुल
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: धैर्य। मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये पैंतरा क्या था और किस
1: देखिए
0: तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: हाँ हाँ
1: वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
0: बहुत
1: ओढ़ली पैंतरा
0: खूब
1: था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक के बहुत बारीक काम था ये,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हर एक को समझना आसान नहीं था।
1: जी जी
0: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
1: जी जी
0: में गवाया,
1: जी
0: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई, और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
1: ये
0: कहानी होती है।
1: हाँ ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
0: कुमार
1: वो,
0: सानू के
1: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
0: जी।
1: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, और नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
0: अच्छा
1: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्ण मूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
0: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
1: पैंतरा हो गया।
0: खेला। जी
1: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूं ये वो, मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से हम मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है, तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
0: उनकी
1: उनका गाना
0: रिकॉर्डिंग
1: है,
0: है।
1: तो मैं सनी में पहुंचा,

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे।
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे। दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी अन्य।

0: और शनि में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकते।
1: गा पाएंगी।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया, शानुदा शायद बर्थडे

0: मैत्रा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा दो लाइन के लिए भी आए?
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी
0: तो वो मेरे को हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन।
1: बहुत सुंदर थी, और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है।
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा। और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पर हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके
1: है।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता। और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या मई, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके यारा दिल भी मारे झटके। तो अब ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर।

0: जी
1: भली बाद में उसको पता
0: जी
1: लगे कि ये मेरी
0: सच्चाई
1: बहन की
0: यही है।
1: सच्चाई है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा।
1: रिएक्शन आएगा तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके और भैया को तू खटके।
0: हाँ अच्छा
1: और ये
0: जी
1: गाना कंप्लीट
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी
1: हुए।
0: जी

0: हटके।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। ये कार्यक्रम हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी।
2: का प्रयत्न करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बुलबुल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना

नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहे, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा

0: शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भर भारतस्य च संकल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान

0: नमस्कार बहनों, रोजाना की तरह हम से हाजिर हैं गृह लक्ष्मी कार्यक्रम को लेकर। मैं महजबीन और हमारे साथ कार्यक्रम में एक और हमारी सखी है रानी।
1: बहनों स्वीकार कीजिए मेरा भी प्रेम भरा नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और विशेषकर आज, क्योंकि आज है रविवार। सभी को कुछ न कुछ काम करने हैं, क्योंकि रविवार को किसी की शॉपिंग होती है, किसी का कहीं घूमने का प्लान है, तो किसी का अपनों से मिलने की चाह। आप सबने भी तो आज अपने लिए कुछ न कुछ जरूर सोच रखा होगा, है ना महजबीन?
0: हाँ बिल्कुल सही कहा रानी तुमने, इससे सप्ताह का सभी को इंतजार रहता है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस दिन नींद भी पूरी होती है और कहीं ना कहीं सपने भी।
0: मिले भी मुझे अगर कोई शाम फुर्सत की, मैं क्या कहूँ कौन हूँ, मैं सोचूंगा इसके बारे में।
1: हाँ सच में आज हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बारे में ख्याल ही नहीं रहता, हमेशा भाग दौड़ लगी रहती है। लेकिन बहनों जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगी तो जिंदगी भर यही अफसोस होगा कि काश मैंने अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया। बहनों खुद को तरोताजा करने और मानसिक शांति के लिए अपने इस बिजी शेड्यूल से खुद को समय दे, बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप चाहें तो अपना सकती हैं, क्यों?
0: और सबसे बड़ी बात यह है ना कि रानी, हमें सबसे पहले सप्ताहांत में खुद को डिजिटल मीडिया से दूर रखना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे की, क्या प्लानिंग है, चाहे वो कविता के रूप में आप लिखें, उसे उभारें, कहानी लिखें या फिर कोई नॉवेल पढ़ें, या फिर आप में अगर कोई और प्रतिभा है, गुण है, तो उसे पहचानने की कोशिश करें और उसे निखारें और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। और ये भी है ना रानी,
1: हाँ,
0: कि आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो समाज में एक मैसेज भी जाएगा।
1: बिल्कुल बहनों, जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हम अपने काम भी और अच्छे से कर पाते हैं। खुद को थोड़ा समय देना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आपकी सेहत और खुशी दोनों के लिए बेहद जरूरी है।
0: और जिंदगी की उलझनों को हम करें बाय बाय और वो काम पर ध्यान दे जहां आपने अपनी पहचान को खो दिया था, यानी उस सप्ताहांत में एक दिन अपने लिए खुद को निखारने के लिए निकालें, चाहे वो किसी रूप में भी हो। अफसोस ना हो कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, फुर्सत कहाँ है, किसी को किसी का हाँ।

0: पूछने की।
1: हाँ बहनों, इसलिए तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ देते हैं और कुछ ऐसे मेहमान से मिलवाते हैं जिनसे मिलकर आप में उत्साह जागे और आप भी उनसे इंस्पायर हों। हमारे कार्यक्रम का यही मकसद रहता है कि आप अपने उन फुर्सत के पल को सप्ताहांत में खोज निकालिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करिए।
0: हाँ, और रानी, हम यहाँ बातें कर रहे हैं सप्ताहांत में होने वाले बात का, जिस तरह से आपको काम करना है, क्या प्लानिंग करनी है, बहुत सारी बातें हैं और सुकून के लम्हे। तो क्यों ना सुकून एक चीज में और भी मिलती है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत जो लेकर आए हैं।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
8: हाँ, और बहनों अब समय है आपको एक भेंटवार्ता सुनवाने का। बदलता फैशन और बदलते जमाने के साथ किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इस पर बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला और हमारी आज की मेहमान है आस्था किरण, फैशन डिजाइनर। लीजिए सुनिए ये भेंटवार्ता।
9: है सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी पहचान की भी होती है। और जब यही आत्मविश्वास हमारे पहनावे में झलकता है तो वो केवल फैशन नहीं रह जाता, बल्कि हमारी सोच और पहचान का परिचय बन जाता है। समय के साथ हमारी जीवन शैली, पसंद नापसंद और फैशन के मायने लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि बदलते फैशन का हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारी सांस्कृतिक पहचान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। बदलता फैशन, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विशेष अतिथि, फैशन डिजाइनर और फैशन एजुकेटर आस्था किरण जी। नमस्कार आस्था किरण जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
10: नमस्कार आपको भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
9: जी आस्था जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फैशन क्या है? क्या फैशन केवल कपड़ों तक सीमित है या इससे कहीं ज्यादा है?
10: ये फैशन के बारे में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज फैशन को लोग समझते हैं कि वो सिर्फ कपड़ों तक सीमित है, पर मेरे विचार से ऐसा नहीं है। फैशन सिर्फ पहनावा ही नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बोल सकते हैं, व्यक्तित्व बोल सकते हैं, क्योंकि फैशन ये बताता है, ये अवसर देता है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, या फिर अगर आपको कोई देखे या हमें कोई देखे तो वो समझे कि उसका व्यक्तित्व उसके कपड़ों से, उसके पूरे वेशभूषा से कैसे परिलक्षित हो रही है। संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय फैशन देता है, ना सिर्फ कपड़ों के माध्यम से ही।
9: बिल्कुल, यानी फैशन सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं बल्कि सोच और व्यक्तित्व का भी हिस्सा है।
10: जी बिल्कुल बिल्कुल।
9: अब अगर बदलाव की बात करें तो समय के साथ फैशन में लगातार बदलाव आते रहते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है?
10: जी हाँ, ये फैशन बदलते हुए परिवेश में हमेशा नएपन के साथ आता है। आप देखेंगे कि हमारे चारों तरफ, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस संस्कृति में पले बढ़े होते हैं, हमारी जो आर्थिक स्थितियां होती हैं, जैसे कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई रिच पीपल है, तो सभी लोगों का अपना एक दायरा होता है और फैशन हर दायरे में अपने हिसाब से फिट होता है। मतलब मेरा कहना ये है कि फैशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम आज क्या पहन रहे या कल क्या पहन रहे, पर इसमें लगातार बदलाव हमने एक्सेप्ट की है, हमने हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस है कि हर दिन हम नई नई चीजों को, नई नई रचनात्मक चीजों को एक्सेप्ट करें और उन सब चीजों को हम अपने फैशन में, यानी कि अपने व्यक्तित्व में, अपने पहनावे में, अपने सौंदर्य में, अपने आभूषणों में ऐड करते रहे और हर समय कुछ नएपन के साथ। सभी लोग आना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखे, तो एक बदलाव हमेशा बना रहता है। बदलाव हमेशा खूबसूरती की तरफ बढ़ता है, ना ही सिर्फ एक स्टैग्नेंट होकर रह जाता है। तो हमेशा नई पीढ़ी कुछ अलग अलग चीजें लेकर आती है और जिसको हम लोग अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है कि फैशन लगातार बदलता रहता है और जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते रहते हैं।
9: बिल्कुल, समय बदलता है तो पसंद और फैशन भी बदलते हैं। लेकिन आज इन बदलावों को तेज करने में एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत की भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सोशल मीडिया, फिल्में और सेलिब्रिटीज

0: फैशन को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं? क्या इसका असर हमेशा सकारात्मक होता है या कभी कभी लोगों पर दबाव भी बनता है?
1: यकीनन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, आप देखते होंगे कि कुछ सालों पहले जैसे आप या मैं जब हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में होंगे तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था, पर आज हर समय सोशल मीडिया में ही लोग बने रहते हैं। फिल्में या सेलिब्रिटीज की जो फैशन होती है वो जितनी भी चीजें पहनते हैं या जो भी स्टाइलिंग करते हैं, पहले के जमाने में हमारे पास वो कई किताबों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से आते थे, परंतु आज किसी सेलिब्रिटी ने कुछ अच्छी डिजाइनिंग या स्टाइलिंग की या कोई अच्छी फिल्म आ गई या कोई सर सोशल इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर कुछ अच्छा पहन करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वो आपके एक क्लिक पे आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। मतलब हमारे बीच, हमारे ऊपर सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रभाव आज के डेट में है कि हर कोई कहीं भी मिलान या इटली में बैठा हुआ जो फैशन ब्लॉगर है या फैशन इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई अच्छा ड्रेस बनाता है तो वो विदिन अ सेकेंड आपको रांची झारखंड में बैठे हुए अपने घर में आपके टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे नजर आने लगता है और आप उससे प्रभावित होकर के अपने फैशन सेंस में, अपने आप में वो बदलाव लाने की कोशिश करने लगते हैं। और आपने सही बोला कि ये सिर्फ सकारात्मक ही नहीं होता है, बहुत बार और ज्यादातर मैं देखती हूँ क्योंकि मैं खुद फैशन डिजाइनिंग बैकग्राउंड से रही हूँ और लगातार मैं इन चीजों को देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि एक दबाव हमेशा इसलिए बना रहता है कि लोगों को हर वक्त चाहते हैं कि नई चीजों के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट हो। वैल्यू ऑफ मनी जो कहते हैं ना, जो किसी भी उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फैशन की ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात करते हैं या वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आप किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टीज में या किसी भी जगह जाना चाहेंगे तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, है ना? और ये रिपीट नहीं करने का एक बहुत बड़ा दबाव हमारे ऊपर होता है कि अरे हम लोगों ने तो कल ही वो कपड़ा पहना था, अरे हमने तो फैशन स्टाइल कल ही करी थी, तो हम लोग फिर कल क्या करें? तो कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर बना रहता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये दबाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका एक बेटर स्वरूप भी है। जितना ज्यादा दबाव होगा या जितनी जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतने ज्यादा मार्केट का विस्तार होगा। मतलब क्या कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा व्यापारिक मंच मिल रहा है जिसमें कि हम लोग फैशन डिजाइनिंग के तरफ या फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सभी लोग स्वरोजगार पे डिपेंड करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इससे एक बहुत बड़ा मार्केट भी क्रिएट होता है। तो दोनों ही पक्ष हैं।
0: बिल्कुल, लोग अक्सर हर नया ट्रेंड अपनाने की कोशिश करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हर ट्रेंड अपनाना सही है या व्यक्ति को अपनी उम्र, सुविधा और व्यक्तित्व के अनुसार चुनाव करना चाहिए?
1: जी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा आपको, फैशन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बराबर और सभी के लिए एक्सेप्टेंस एक समान हो, है ना? बस हमें फैशन की दौड़ में लगे रहने के कारण हम लोग कुछ भी पहनना चाहते हैं जो आज मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, शारीरिक बनावट अलग होती है और जहां तक मैंने बोला कि ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत मैटर करता है, सोसाइटी मैटर करता है, संस्कृति कल्चर सभी कुछ मैटर करता है, जिसको देखते हुए ही फैशन को अपनाना चाहिए। यानी कि अपने व्यक्तित्व को समझते हुए, अपने व्यक्तित्व में जिससे निखार आए उन चीजों को ही अपने फैशन में एक्सेप्ट करना चाहिए।
0: आजकल सस्टेनेबल फैशन की काफी चर्चा हो रही है, ये क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है?
1: आज आप देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की जाती है। सस्टेनेबल फैशन इससे भी निकल कर आता है कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके के कपड़ों का, इस तरीके के परिधानों का निर्माण करें जो प्राकृतिक हो, है ना? प्राकृतिक मतलब हस्तशिल्प, स्थानीय हस्तशिल्प का उसमें उपयोग हो, जो फैक्ट्रीज हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस्ड केमिकल प्रोसीजर के बाद बनाए जाने वाले फैब्रिक्स, कपड़े हो, उन सब से हम लोग बचाव करें। तो सस्टेनेबल फैशन का एक बहुत बड़ा महत्व ये

0: होना चाहिए कि हम जिन भी कपड़ों का उत्पाद करें उसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। जो भी कपड़े हैं उसको हम लोग रीयूजेबल बनाने वाले होने चाहिए, ताकि हम लोग उन कपड़ों को रीयूज करके, न्यू क्रिएट करके फैशन में उपयोग भी करें और साथ ही साथ सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट भी करें। जो हमारा कपड़ा है वो कहीं ना कहीं सिल्क, कॉटन, इन सब चीजों का ही ज्यादा बना हुआ हो, क्योंकि हमारा जो देश है वो सिल्क और कॉटन के लिए काफी नामी है और आप जानते हैं कि विश्व स्तरीय यहाँ पे इसका उत्पादन होता है, और इन सब चीजों को प्रमोट भी हमें करना चाहिए। सस्टेनेबल फैशन एक बहुत ही अच्छा मार्केट भी क्रिएट करेगा और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी हम लोग बच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और बात जब हमारे देश की पहनावे की हो रही हो तो भारतीय पारंपरिक पहनावे की अपनी अलग पहचान होती है। बदलते फैशन के दौर में इसे कैसे सहेज कर रखा जा सकता है?
0: जी हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि हमारी भारतीय परिधान के विषय में हम लोग हमेशा जागरूक रहें और आने वाला समय भारत का है और भारत का होना है, इसलिए हम लोग हमेशा चाहेंगे कि अपने पारंपरिक परिधानों को, अपने पहनावों को, भारतीय पहचान को बनाए रखें। बदलता हुआ फैशन जरूर हम लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ है, हम लोग उसको, फैशन को अपने साथ एक्सेप्ट भी करते हैं, पर उन चीजों में मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमें नहीं करना है कि हम अपनी भारतीय पहचान को ही खो दें। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो इतिहास है, या कह सकते हैं कि जो विरासत है, ये सारी भारतीयता को कहीं ना कहीं शोभित करती है ना। हमारा फैशन, हमारा भारतीय फैशन तभी सुंदर लगेगा जब उसमें हम लोग देख सकेंगे कि वो आरामदायक फैशन हो, साथ ही साथ उसकी जो अपनी मर्यादा है, उसका जो अपना लुक है, वो सब भारतीयता को कहीं ना कहीं संबोधित करता हुआ नजर आए। और इन सब चीजों में हम लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारे कल्चरल हेरिटेजेस हैं, जिसको कहते हैं हम लोग, वो हम लोग फैशन के इस दौर में बनाए रखें, बचाए रखें, और उस लेगेसी को लेकर के ही हम लोग फैशन वर्ल्ड में आगे बढ़े।
1: बिल्कुल। अब हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के लिए फैशन और बजट दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसे में कम खर्चे में स्टाइलिश और स्मार्ट दिखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: ये तो बात बिल्कुल पते की है। महिलाओं का एक ऐसा सेगमेंट है जो कि फैशन के दुनिया को या फैशन के मार्केट को हमेशा बनाए रखता है। आपके प्रश्न में ये है कि कम खर्च में और स्टाइलिश और स्मार्ट कैसे दिखें, तो मेरा मानना है कि अगर आप फैशनेबल होना चाहती हैं, स्टाइलिश और स्मार्ट भी दिखना चाहती हैं, साथ ही साथ आपका एक बजट भी होना चाहिए, तो बस सबसे अच्छा यही स्मार्ट विकल्प रहेगा कि मिक्स एंड मैच, हैंडलूम और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और अच्छी फिटिंग पे साफ सुथरे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए सबके सामने आए।
1: बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी फैशन को लेकर काफी जागरूक है और उत्सुक भी। हम आपसे जानना
0: जी
1: चाहेंगे कि बदलते फैशन का युवाओं और महिलाओं के आत्मविश्वास और सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: फैशन का आत्मविश्वास पे बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम लोग कहीं पे भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन स्थिति में क्या बातें आती हैं, आती हैं कि हमारा पहनावा कैसा हो। जैसे अगर हम लोग किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा प्रोटोकॉल, हमारा जो स्टाइलिंग है वो उस मीटिंग या बैठक के अनुसार हो। अगर हम किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम लोग वहां पे अपने आप को किस तरह से फैशनेबल और स्टाइलिश प्रेजेंट करें। तो जब हम लोग आत्मविश्वास की बात करते हैं तो आत्मविश्वास वहीं से निकल कर आता है कि अगर आपका पहनावा, आपका जो प्रेजेंटेशन का ढंग है, वो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है कि नहीं, आपके एज ग्रुप के अनुरूप है कि नहीं, आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुरूप है कि नहीं, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। और जब आप इन सब चीजों के साथ एक बहुत ही अच्छे ढंग से एक अपने व्यक्तित्व को कपड़ों के माध्यम से, अपने हेयर स्टाइल, मेकअप, एसेसराइजिंग के माध्यम से जब सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा होता है और आप अपनी किसी भी चीज को, चाहे वो आप बात कर रहे हो या कहीं पे आप बैठे हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आएगा। हालांकि बाहरी रूप पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं, क्योंकि बाहरी रूप

0: कि वो आंतरिक सुंदरता को थोड़ा दबा देता है, परंतु आज के समय में मैं देखती हूँ कि लोग इनर स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करते हैं, मींस आत्मविश्वास के साथ उनकी जो अपनी स्किल्स है, उनकी जो अपनी क्वालिटी है वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ जो बाहरी आवरण है उसका एक बहुत अच्छा ब्लेंड करके सभी के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो मेरे ख्याल से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या आत्मविश्वास के साथ सबके सामने आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व को और अपने इनर सोल को दोनों को बहुत अच्छे से समझकर अपने बाहरी पहनावे को या आप जो बाहर से अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं वो उन सब चीजों को ध्यान में रखें और तब किसी के सामने प्रस्तुत होएं या सबके सामने आप एज अ फैशनेबल आइकॉन या जो भी आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं उस व्यक्तित्व के अनुसार आप काम करें, तो उससे आपका आत्मविश्वास, आपका ज्ञान, आपका व्यवहार इनफैक्ट काफी संतुलित नजर आएगा।
1: बिल्कुल, चलते चलते हमारी श्रोता बहनों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें, खासकर युवाओं के लिए भी जो फैशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
0: बहनों के लिए तो और हमारे साथियों के लिए तो मैं कहूंगी कि फैशन को आप लोग जरूर अपनाएं, लेकिन आप अपने मौलिकता को कभी ना खोएं, है ना। आपके आत्मविश्वास, आपकी संस्कृति का सम्मान आप हमेशा करें। ट्रेंड बदलता रहता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेंड के साथ साथ अपना संस्कार भी बदल दें, है ना। फैशनेबल तो बने रहना चाहिए पर अपने जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए। और दूसरा है कि युवाओं का आपने प्रश्न किया, युवाओं को क्या सलाह देना चाहती हूँ। फैशन को मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ग्लैमराइज ना करें, उसको एक प्रोफेशन के नजर से भी देखें, प्रोफेशनल क्रिएटिव करियर के रूप में भी देख सकते हैं, और उनकी जो रुचि और क्षमता है उसको भी पहचाने। तो आज के दौर में हम लोग कह सकते हैं कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फैशन डिजाइनिंग का जो क्षेत्र है काफी विस्तृत क्षेत्र है। तो मेरा जो मुख्य संदेश यही है कि फैशन केवल पहनावा ही नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपकी संस्कृति भी रहेगी, और आज के युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कार्य करने का बहुत बड़ा मौका भी है। तो युवा जो वर्ग है वो फैशन को ना सिर्फ ग्लैमर के रूप में देखें बल्कि एक बहुत बड़े व्यवसाय और आने वाले अपॉर्चुनिटी की तरह देखें।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार आपने हमारे साथ साझा किए। आस्था किरण जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया, इस विषय पर इतनी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आप सबों का।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता बदलता फैशन। हमारी आज की मेहमान थी आस्था किरण, जो कि पेशे से फैशन डिजाइनर है, और इनसे हम बातें कर रही थी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला। तो बहनों, लीजिए सुनिए एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: पहनो, चलते चलते हम आपको जानकारी देते हैं कि मेडिटेशन है क्या। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से मानसिक तनाव कम होता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है, रात में गहरी और बेहतर नींद भी आती है, तो हमें चाहिए कि मेडिटेशन की ओर आए।
1: बिल्कुल सही कहा मैं जबीन, नियमित ध्यान से तनाव का जो स्तर होता है ना बहनों, वो कम होता है, जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या में बहुत राहत मिलती है।
0: हाँ, और ये भी बात है कि आत्म जागरूकता भी जरूरी है, कि विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाना भी होता है, जिससे कि बेवजह गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू पाया जा सकता है। और हाँ बहनों, शारीरिक लाभ तो अनेक है जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। उच्च रक्तचाप नियंत्रित करता है, ध्यान करने से दिल की धड़कन शांत होती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर सामान्य करने में मदद मिलती है। हाँ एक बात और, जो कि अभी अनिद्रा की समस्या है उसे भी दूर करती है, तो बहनों इस ओर आप जरूर ध्यान दें। तो हम चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और अब दे महजबीन
1: और रानी को जाने की अनुमति। नमस्कार,
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भारत भारती के अंतर्गत आंचलिक अंगिका मैथिली भाषा में। कलाकार है विजय भारती झा एवं साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आप सुनेंगे।

आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम लोक रंग में। खड़िया लोकगीत कलाकार हैं बिलियाना डुंगडुंग और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत खड़िया लोकगीत। कलाकार थे बिलियाना डुंगडुंग और साथी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और युग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। चाईबासा में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन में संलिप्त लोगों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बालूघाटों की नीलामी समय पर नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: राज्य में जिनकी सरकार, यानी जितनी भी प्रकार के खनिज, वो सब खनिजों की इसी प्रकार से चोरी हो रहा है। इन 6 वर्षों में 5-6 तो यहाँ आयरन ओर की खदाने जिनको ऑक्शन करना था, नहीं किया। शुरू में भारत सरकार को पत्र लिखा कि हम ही को खोदने की इजाजत दीजिए। इजाजत उनको नहीं मिली तो इलीगल तरीके से सब खुदवाई कर रहा है।
0: पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 नए संक्रमित मिले हैं। गंभीर मरीजों को जमशेदपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में जांच, उपचार और जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों से तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर रांची नगर निगम में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि अब तक 14,444 स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 29,84,00,000 रुपए का ऋण दिया जा चुका है। पात्र लाभार्थियों को सांकेतिक ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। महापौर रोशनी खलखो ने योजना को छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की घोषणा की है। मेधा सूची में

0: शामिल 1941 अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच 1 से 14 जुलाई तक रांची के सदर अस्पताल में होगी। पहले दिन 150 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जिसके आधार पर आयोग अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सेंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सहित पूरे झारखंड में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसके तहत जिले के 5,05,524 बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का शुभारंभ महापौर रोशनी खलखो, विधायक सीपी सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और एनएचएम के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि बनाए रखने के लिए हर बच्चे तक खुराक पहुंचना जरूरी है।
1: पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है ताकि एक भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए और सदर अस्पताल के माध्यम से बूथों पर यहाँ के कर्मचारी पोलियो की खुराक देने का काम कर। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाए, कोई भी उससे वंचित न रह जाए।
0: वहीं मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्डों में आरोग्य केंद्रों और हेल्थ पॉइंट के माध्यम से बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है।
2: निश्चित इसमें नगर निगम भी भागीदारी निभाएगी और एक एक बूथ पर, एक एक आरोग्य मंदिर पर, एक एक दरवाजे पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को खोज खोज करके पिलाई जाएगी। मैं सारे बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर।
0: देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने नए सदर अस्पताल में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 1488 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में भी 0 से 5 वर्ष तक के 17,765 बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाने के लक्ष्य के साथ आज पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दुमका पलाश टोटो योजना की शुरुआत की गई। विधायक बसंत सोरेन ने योजना का लोकार्पण कर सखी मंडल के 21 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की इस योजना के तहत महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार से अपनी आय बढ़ा सकें। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि सभी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सहित आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
3: सबसे पहले हमारे ये आवश्यक है हम लोगों के लिए जानना कि लोड का असेसमेंट सही तरीके से, जिससे कि कृपया अपना ऑडिट जरूर कराएं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई कर दें हम लोग और कोचिंग संस्थाओं को बंद करा दें। सॉल्यूशन ये है कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना लोड असेसमेंट कराइए, अपना फायर सेफ्टी का ऑडिट कराइए।
0: राजधानी रांची में सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। थाईलैंड में 27 से 29 जून तक आयोजित हुई अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ग्रीको रोमन टीम ने 150 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि उज्बेकिस्तान 171 अंकों के साथ पहले और कजाकिस्तान 167 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रांची के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार ने भारतीय अंडर 15 टीम के कोच के तौर पर तृतीय स्थान विजेता की ट्रॉफी ग्रहण की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और योग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर-15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ऐसे कई गीत होंगे जिसमें नायक नायिकाओं के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है और पाश में वो बजते हैं। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, जिसने अधिकतर फिल्में देखी होंगी उन्हें पता होगा। चलिए तो कार्यक्रम में इस सफर में हमारे साथ तो है ना अब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कला शायद यही है कि वो टूटते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। दुनिया उसकी मुस्कान देखती है, लेकिन उसके भीतर चल रहे युद्ध की आहट केवल उसका अपना मन सुनता है। बाहर से समंदर शांत दिखे ये जरूरी तो नहीं, गहराइयों में तूफानों का बसेरा भी तो होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर का ये जो पोस्ट है हमारे फेसबुक पेज पे आया है, हम थोड़ा लेट हैं लेकिन हम यही कहेंगे कि हम बेवफा हरगिज़ न थे। नहीं नहीं, आप कहाँ हैं हर बेवफा, हमने तो कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि हमारे श्रोता बेवफा हैं, बल्कि आप तो वफादार हैं, तभी तो इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, है ना। एक श्रोता लिखती है कि सुप्रभात, आज तो दिल को छू लेने वाली इबारत है, मन में जो भाव होते हैं कई बार ऐसे होते हैं किसी को बता नहीं सकते। कभी किसी की याद आती है, कभी कोई घटना याद आ जाती है, लेकिन वर्तमान से मेल नहीं खाती। जैसे शादी ब्याह के समय हमारी माँ याद आती है, हंसते हंसाते हमें रोना पड़ता है, फिर सबके सामने चुपके से हम अपने मन को शांत करते हैं और किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब बात शादी की चली है तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। ये गीत सुनने के बाद हमारी आंखें छलछला आती हैं, जब पर्दे पर इस गीत को हम देखते हैं तो भाई जो हमने आपसे सवाल किया था वही होता है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि अधिकतर ये देखा जाता है कि हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो ये जवाब मिलता है कि ठीक है या बढ़िया है। ऐसे ही हम भी कहते हैं बढ़िया है जब हमसे कोई पूछता है, जबकि जरूरी नहीं हम सबके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि भीतर तो उथल पुथल और वैचारिक तूफान सबके साथ चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आने के बाद तो हम रहे ना हम, हमारी श्रीमती जी तो कहती हैं कि 1 बजने वाला है, सब काम से फ्री हो जाओ, नहीं तो 1 घंटे तक आपके मिजाज नहीं मिलेंगे, क्या करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखें भर आती हैं। बैकग्राउंड गाने में आंखें भर आई थी। फिल्म हाथी मेरे साथी में जब रामू हाथी की मृत्यु हो जाती है और बैकग्राउंड में रफी साहब का गाना बजता है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना, मेरे यार, तो आंखें भर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक सीन है वो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गाना सुनते सुनते तो आंखें बहने लगती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज एक गाना है बिन फेरे हम तेरे का टाइटल गीत, जो कि किशोर कुमार ने गाया है, बड़े ही भावुक अंदाज में गाया है। कभी कभी तो इस गीत को गुनगुनाने में मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। और एक ऐसा ही गीत फिल्म भीगी पलकें का है जिसे अक्सर किशोरदा ने गाया। उस गाने को अक्सर जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि मेरी आंखें भर आई हैं। गीत है जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनकर भी हमारी आंखें भीग रही हैं, क्या करें जी। तो हमारे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और हम शामिल कर रहे हैं आपके जवाब। अगला गीत है जगजीत कौर की आवाज में फिल्म बाजार से, मिर्जा शौक की ये रचना है और खय्याम साहब का संगीत है। याद कीजिए सुप्रिया पाठक को, साथ में है फारूक शेख। क्या हालत है दोनों की, बिना कुछ कहे जैसे सब कुछ कह जाते हैं इस गीत के माध्यम से।

जगजीत कौर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। हमारे सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं हम कि आपके अंतर्मन की आवाज क्या है, और या यूं कह सकते हैं कि इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। बाहरी रूप में तो आप इस सफर में हमारे साथ चल रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं, लेकिन आपके भीतर इस वक्त क्या समझ गए मेरी बात? और ऐसा कोई गीत जिसे आपने जब फिल्म के दौरान देखा और आपकी आंखें भर आई? बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें देखते समय हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन आपकी याद में जो गीत शामिल है उसका जिक्र करें। हमारे श्रोता ने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में कि हमारे भीतर यानी मेरे भीतर बहुत शोर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने लिख दी कि वाकई भीतर एक शोर जो है, कोलाहल मच रहा होता है हमारे, लेकिन बाहर हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यही जिंदगी का शायद फलसफा है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत यादगार होगा क्योंकि आज की थीम बहुत शानदार है। एक श्रोता लिखते हैं कि संदर की खामोशी को आजकल एक नाम मिल गया है, साइलेंट डाइवोर्स, जिसमें पति पत्नी साथ रहते हैं। पति पत्नी के अलावा सभी को ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, पर अंदर की परेशानियों को, अंतर्द्वंद को ये दोनों ही अच्छे से समझ पाते हैं। और हिंदुस्तान में तो खास तौर से ऐसे कई जोड़े आपको मिल जाएंगे जो अलग भी नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं रह पा रहे। बहुत बड़ी समस्या की ओर आपने इशारा किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म में जब अभिनेत्री को गोली लग जाती है तो बच्चा अपनी मां के लिए रोते हुए गीत गाता है, घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वो पल बहुत भावुक था मेरे लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये द्वंद्व हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार हमें सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने मूल्यों को समझते हैं, धैर्य रखते हैं और स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं तो ये द्वंद्व धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाता है। बहुत सुंदर। बाकी आपने और भी बहुत कुछ लिखा है कि अंतर मन में द्वंद तब होता है जब हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्तव्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर स्वार्थ होता है और दूसरी ओर नैतिकता और जिम्मेदारी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा अलग हटके काफी रोचक विषय चुना गया है जिसमें सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत बजता है और अंत तक बजता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बर्मनदा के गाए ज्यादातर गीत अंतर मन की आवाज होते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे ऐसे गीत हैं एसडी बर्मन साहब।

अगर आप बता सके तो बताइए। पर्दे पर इसमें इस गीत में शर्मिला टैगोर है, उनके साथ पिता के रूप में कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में उस किरदार का नाम है गोपाल त्रिपाठी, उनका असली नाम क्या है बताइएगा?

सचिन देव बर्मन की आवाज थी, फिल्म का नाम था आराधना। हमने आपसे पूछा था कि शर्मिला टैगोर के साथ उनके पिता के रोल में, जिनका नाम फिल्म में गोपाल त्रिपाठी है, कौन से कलाकार हैं। हम आपको ये भी बता दें, ये कलाकार गीतकार और संगीतकार भी हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फ्लैशबैक गीतों की अगर बात करें तो संगीतकार गायक सचिन देव बर्मन जी ही एक ऐसे गायक हैं जिनके गीतों को सबसे ज्यादा फ्लैशबैक में फिल्माया गया है। शायद ही कोई गीत हो जो सचिन दा की आवाज में किसी अभिनेता पर फिल्माया गया हो जिसमें अभिनेता ने अपने होठ हिलाए हो। वैसे मैंने अलग गीतों की लिस्ट पोस्ट कर दी है, देखते हैं मेरी लिस्ट में कितने गीत बचते हैं। बिल्कुल, आज तो हमारी पसंद के गीत जो बज रहे हैं, यानी हमने जो गीत चुने हैं आपकी लिस्ट में, वो लगभग गीत शामिल हैं। और इसके लिए तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप सभी को ढेरों बधाइयां दे भी दी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म के पात्र को समझना, उस पात्र के मन में क्या चल रहा है, इस बात को पर्दे पर व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि निर्देशक के हाथों में सारे पात्रों के धागे होते हैं, इसलिए कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कलाकारों से गाने ना गवाकर पार्श्व में गाना चलाते हैं। ये काम निर्देशक के लिए और संगीतकार के लिए मुश्किल होता है। पात्र के अंतर्द्वंद्व को कलाकार अपने अभिनय से पर्दे पर साकार करता है, लेकिन वो किस तरह साकार करे निर्देशक को सोचना होता है। सभी की मेहनत और सोच का परिणाम होता है ऐसा गाना जो आज भी दर्शकों को याद आता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म निकाह में सलमा आगा और उनके पति के साथ जब हनीमून पर जाती हैं, लेकिन उनके पति बिजनेस के काम में उलझ जाते हैं और अपने पति को समय नहीं दे पाते, तब सलमा आगा अकेली पड़ जाती है और ये गाना बजता है, समा भी है जमा जमा, ये गाना। और मतलब ये सिचुएशन आपको पसंद आई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका लिखना है कि आंधी की भावपूर्ण गाने से सफर के विषय वस्तु की संवेदना अनुरूप जबरदस्त आगाज, और ये फिल्म भी अंतर्द्वंद से भरी हुई फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा, आंधी फिल्म तो बहुत ही कालजयी फिल्म है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बढ़िया थी मैं आज की। आप सभी उद्घोषकों की खासियत ये है कि आप कार्यक्रम में विविधता बनाए रखते हैं जिससे कार्यक्रम सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए जब बैकग्राउंड में ये बजता है तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। बेहद मार्मिक गीत है, दर्द भरी रफी साहब की आवाज भी दिल को छू जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक गीत है वो। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का गीत मेरे साजन है, उस पर जब भी सुनती हूँ या देखती हूँ तो मेरी आंसू नहीं रुक पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत भी बहुत दर्द को समेटे हुए है। तो हमारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि इस वक्त आपके भीतर क्या तूफान चल रहा है। कार्यक्रम तो आप हमारे साथ सुन ही रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं सफर में, लेकिन भीतर क्या चल रहा है एक एक पंक्ति में बताइए ना। तो चलिए बंदिनी फिल्म का ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत थोड़ा सा हमने बदल दिया है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत।

हमारे सवाल के जवाब में श्रोता जवाब दे रहे हैं सवाल का कि आपके भीतर क्या चल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दीदी मैं तो सुबह ध्यान करता हूँ इसलिए मन शांत रहता है, इसलिए तूफान की कोई संभावना नहीं होती। बहुत शानदार। वहीं लिखते हैं एक श्रोता कि कार्यक्रम सुनते हुए मन में चल रहा है कि आज छुट्टी का दिन है और कौन कौन से जरूरी काम है जिन्हें निपटाना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या क्या बताएं आपको कि क्या तूफान चल रहा है भीतर। एक श्रोता ने लिखा है कि मन के भीतर ये द्वंद्व चल रहा है कि कैसे इतने अच्छे सवालों का जवाब दे, क्या खूब। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने सही जवाब दिया है कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था सफल होगी तेरी आराधना में, कलाकार थे पहाड़ी सान्याल। बिल्कुल सही कहा आपने, पहाड़ी सान्याल थे और जो गोपाल त्रिपाठी की भूमिका में होते हैं। और पहाड़ी सान्याल एक गीतकार और संगीतकार भी हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके पिता भी नागेंद्रनाथ सान्याल भी बहुत बड़े कलाकार थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो मैं लोगों को ऊपरी तौर पर बड़ा ही शांत नजर आता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो उथल पुथल मची रहती है, उसके बारे में मैं ही जानता हूं। ये सिलसिला जारी ही रहता है। इनसे उबरने के लिए मैं या तो डायरी लिखने बैठ जाता हूं या लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूं या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर लेता हूं। बिल्कुल यही तरीका है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी भी चैन नहीं आता जीवन में। अरे मन को समझाइए, बहुत जरूरी है मन को समझाना। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन मंदाकिनी जी बहुत ही अच्छा है, आवाज मीठी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। हम भी आप सभी को सैल्यूट करते हैं कि आप इस सफर में अंत तक बने रहते हैं और हमारी जमकर तारीफ करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पहाड़ी सान्याल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, वो शर्मिला टैगोर के पिता बने फिल्म आराधना में। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मदर इंडिया में जब नरगिस कीचड़ में पड़े चने अपने बच्चों को खिलाती है तब रोना आ जाता है। बहुत बहुत क्या कहूँ मैं, ऐसा सीन है वो वाकई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का ये गाना वो जाने वाले तो ऐसा गाना है जिसे भुलाना मुश्किल है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप भी कभी विविध भारती का कोई प्रोग्राम जब प्रस्तुत करती हैं तो अगर उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं भी होती है तो भी आप हमें बिल्कुल महसूस नहीं होने देती हैं, हम श्रोताओं का मनोरंजन करती रहती हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म वीर जारा में गाना चलता है दिल में मगर चाहत के दिए, बहुत ही भावुक गाना है, तब हम भावुक हो जाते हैं। और एक श्रोता ने कहा है कि अंतर्मन की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है, इसलिए शायद इंसान कभी कभी खुश होता है और दुखी भी रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा का जो आलाप है वो हमें भावुक कर देता है। बिल्कुल, उनकी आवाज़ तो जैसे कोई ईश्वरीय आवाज है, ऐसा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मन में जो हलचल है उसे कैसे व्यक्त करूं, आज हंसी का मुखौटा ही सही, बस विविध भारती के कार्यक्रम को सुनना है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन देव बर्मन के स्वर सबसे अनोखे और उनके गाए गीत बहुत विलक्षण लगते हैं और इतनी अच्छी लगती है उनकी आवाज़, मैं बता नहीं सकता, उनके गाने सुनकर मैं न जाने किस दुनिया में खो जाता हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप हमें भावुक करने में सफल हो गई हैं। सच में भावुक हो गए आप? अरे जिंदगी में भावुकता भी

जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, भावुकता भी बहुत हद तक सही है, लेकिन भावुक होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना ही नुकसान कर लें। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म खानदान में नूतन और सुनील दत्त में जब घरेलू झगड़ों में घर का बंटवारा होता है और दीवार खड़ी हो जाती है और बैकग्राउंड में गीत बजता है वो देखो जला कर किसी का, ये फिल्म अनपढ़ का गाना है। तो ये बहुत गीत मार्मिक लगता है, गीत ही अपने आप में इतना गंभीर है कि इसे सुनकर ही जो है मन में तूफान उठ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्वदेश फिल्म का गीत ये जो देश है तेरा भी आंखें भिगो देता है, बहुत सुंदर। और कई श्रोता लिखते हैं कि मेरे चयनित गीतों से एक और गीत सफल होगी तेरी आराधना भी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपका कि आपने पैनी नजर रखी आज हमारी जो हमने जो टैक्स दिया था उस पर और गीत ढूंढने में आप सभी सफल हो गए। चलिए एक ऐसा ही और गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आपकी कसम, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के अनेक रूप हैं, मगर पीड़ा का केवल एक ही रूप है। वो पीड़ा हमारे चेहरे पर दिख न जाए सो हमें अनेक मुखौटे समय समय पर लगाने पड़ते हैं और हमें ठहरना नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। सुख हो या दुख, हम एकदम से तिलमिला उठते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि हमारे जीवन की बेचैनियां तो तब भी सांसें भारी लगे, थोड़ा मन को आराम दे बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के, क्योंकि भावुक हर भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कुछ भावों को संभाल कर हमें रखना होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार, आपने बिल्कुल सच कहा कि भावुक होना चाहिए पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार होठ कुछ नहीं कहते पर अंतर्मन की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है, जिस आपकी आवाज में का प्रवाह गंगा नदी के समान है, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते, बहुत शानदार गीत है, जिंदगी की हकीकत को बयान करता ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अंतर में बस यही चल रहा है कि अपनी बेटी की विदाई कैसे करूंगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर मन के हालात अगर सही नहीं है तो दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खतरा होता है। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि अभी बहुत से गीत रह गए हैं, ये थीम दोबारा लाएं मंदाकिनी जी, अभी मन नहीं भरा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत कानों से नहीं अंतर्मन से सुने जाते हैं, इसलिए वो बरसों बरसों जो है याद रहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम दिल को छू रहा है, आंखें भीगती जा रही हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बेहद खूबसूरत है आज का ये कार्यक्रम। जी, तो कहा ना किशोर कुमार ने कि जो है वक्त रुकता नहीं है और ठहरता नहीं है, बदलता रहता है और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। देखिए, बदल गया है मंजर, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब मंदाकिनी जोशी चाहती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defence production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandedh, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: The Prime Minister mentioned Meghalaya's root bridges, saying these root bridges take decades to take shape. He shared that India has now applied to have Meghalaya's root bridges included in the UNESCO World Heritage Site Network. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House, with President Hermione also present. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the central role of villages in realizing the vision of Viksit Bharat 2047. Addressing the Rashtriya Grameen Vikas Sammelan in New Delhi, Mr. Chauhan said a provision of over 1,51,000 crore rupees, including the state's contribution, has been made under the Viksit Bharat Grameen scheme to accelerate rural development while ensuring livelihood security for rural workers.
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है.
3: विलेज इज नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, इट इज द सोल ऑफ इंडिया. इट इज इंडियाज इकोनॉमी, इट्स आइडेंटिटी. अ विलेज इज नॉट जस्ट अ सेटलमेंट, इट एम्बॉडीज इंडियाज सिविलाइजेशन, कल्चर, वैल्यूज ऑफ लाइफ, ट्रेडिशंस एंड हैज लॉन्ग बीन अ सेंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी. आर स्ट्रेंथ लाइज इन आर विलेजेस एंड सो डज आर फ्यूचर पोटेंशियल. विलेजेस आर ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ आर डेमोक्रेसी. टूडेज कॉन्फ्रेंस इज अ मीनिंगफुल चर्निंग ऑफ आइडियाज एम्ड एट अचीविंग रूरल प्रॉस्पेरिटी.
2: ग्रामीण समृद्धि का मंथन है.
0: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज. फॉर क्विक न्यूज अपडेट्स राउंड द क्लॉक फॉलो अस ऑन आवर एक्स हैंडल @AINNewsAlerts एंड फॉर डिटेल्स ऑफ दीज स्टोरीज एंड मोर लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.newsonair.gov.in एंड डाउनलोड द न्यूज ऑन AIR ऐप. वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मिडडे न्यूज. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. The United States said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. US President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. Iran responded within hours with missile and drone attacks targeting American military facilities in Kuwait and Bahrain. More from our correspondent.
4: The latest exchange marks the most serious collapse of the interim ceasefire agreed earlier this month between Washington and Tehran. The United States Central Command says it carried out strikes on multiple targets inside Iran in response to continued attacks on commercial shipping. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it retaliated by launching missiles and drones targeting U.S. military infrastructure in Kuwait and Bahrain. Following the exchange, both Washington and Tehran accused each other of violating the ceasefire. In a statement, United States Central Command said Iran had been given an opportunity to uphold the ceasefire, but instead launched a one-way attack drone that struck Panama-flagged oil tanker MT Kiku. Iran's foreign ministry, meanwhile, said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as the treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies, with focus on indigenous defence production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
5: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
5: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
5: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से

0: अरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए

0: देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समय हो चला है हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती का, तो आइए

प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयाँ।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका हैं लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं राही प्यार के। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका 2 गाना अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयाम साहब ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

0: कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपये तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम देना होता है। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं और लगभग 11,00,000 परिवारों को लगभग 22,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: जामताड़ा जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को पोलिंग बूथों, अपने अपने घर में टीवी और मोबाइल ऐप पर लोगों ने सुना और सराहना की। भाजपा के जिला महामंत्री कमलेश मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देशवासियों के लिए प्रेरक और उत्साहवर्धक जानकारियां देते हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के सांसद सेवा कार्यालय सभागार में मांडू विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों ने संवाद के दौरान अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान सांसद ने कहा कि जल्द ही वे खुद टाटा और सीसीएल प्रबंधन का प्रभावित ग्रामीणों के बीच वार्ता कराएंगे ताकि विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक एवं ठोस प्रयास किए जा सकें। बैठक के उपरांत सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात का सामूहिक रूप से श्रवण किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल से महापौर रोशनी खलको ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार सहित कई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस वर्ष झारखंड में लगभग 61,00,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड राज्य युवा आयोग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। 25 किलोमीटर के साइकिल रेस में राजगंज धनबाद के रोहित कुमार रवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता और हरित राज्य की परिकल्पना को बढ़ाना है।
2: वो हमारी बचपन की छोटी छोटी खुशियां थी, हमारे पिता का आशीर्वाद था, हमारी माता की सीख थी, उससे हम दूर होते गए। तो एक हमारी पहल है कि लोग साइकिल चलाएं, साइकिल को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। साथ ही साथ ये जो महंगाई की मार झेल रहे हैं हम, और जो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होते जा रहा है हिंदुस्तान, उससे हम बचे।
0: देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 30,00,000 रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए रांची धनबाद समेत राज्य के 20 जिलों में आंधी तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत, महेश्विन, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये है सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनकी परिवार वाली। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीणा देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।
1: महलों

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और इनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये है वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत।
0: मन चाहेगी।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कंटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
2: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
3: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
2: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
3: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
2: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
3: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
2: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
3: अगर मैं मर्द होती
2: तो फिर
3: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
2: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डायन आकर आपको ले गई है।
4: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
2: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे, उनको थक्का सा लगा। आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
3: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस थक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
4: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
3: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
4: आते ही होंगे।
3: देखो शकुंतला
2: जी,
3: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे भी काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो, तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
2: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
3: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
2: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
3: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
2: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
3: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
4: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
0: देखो तो, तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं?
2: हेलो।
1: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्व विख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
1: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
0: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
1: सुनाओ।
0: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
1: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
0: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
2: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
0: शकुंतला? कौन शकुंतला?
1: तुम जानती हो उसे उमा?
0: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
1: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
0: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
1: तब
0: खुद कुमार स्वामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, वो सब क्या ऐसी शादी के लिए थे?
0: जी हाँ।
1: तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
0: कैसी चिट्ठी है?
1: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है।
0: ओह,
1: शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे, ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
1: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
1: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
1: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
0: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
1: तुम खुद भोली भाली हो ना,

0: मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
1: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
2: हों। नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
0: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गांव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहां मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहां एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
1: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
0: वहां एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
1: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुंच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
0: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ कर।
1: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
0: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
1: तुम तो बड़ी हट्ठी हो भाई। चलिए जी हम चलते हैं।
2: अच्छा भाई, फिर मिलेंगे।
0: बाय।
3: मुझे तो पहले ही मालूम था।
0: क्या मालूम था तुम्हें?
3: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
0: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
3: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
0: ये भी कम हटीली नहीं है।
3: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
0: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
3: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
0: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
3: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
0: फिर
3: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
0: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
4: कंपाउंडर
3: जी, अभी आया।
4: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
3: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
4: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
3: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
4: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
0: जी बहुत अच्छा।
5: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही।
6: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट कहकर फटकार दिया।
5: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
6: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
5: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
6: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
5: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
6: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आजकल गाँव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है। इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्म अर्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
5: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख जी कब तक चलेगा।
6: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
5: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
6: शाबाश, ये हुई काम की बात। देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
7: डॉक्टर साहब,
4: क्या हुआ भाई? ये खाओ ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
7: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
4: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
7: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
8: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब,

0: गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
1: ओ, दवाएं क्या हुई?
0: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
1: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
2: ऐसा करो, हाँ? पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
1: अच्छा,
2: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
1: ठीक है,
0: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
2: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे। डॉक्टर साहब, एक बात है।
3: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
2: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा।
3: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
2: वो उमा जी के घर में,
1: मर्द नायकम जी के घर में क्या बात है?
2: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
3: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
4: डॉक्टर साहब,
2: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श।
3: उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ, हम सब चलते हैं।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,
3: कौन है?
2: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
3: आप कौन है? अरे जहनम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
2: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
3: क्या,
2: कुमार स्वामी के घर?
5: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है, और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
3: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकते हैं।
5: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
2: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
3: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
2: अगली बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
3: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
0: डॉक्टर साहब,
3: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
5: उस कमरे।
3: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
0: आइए डॉक्टर साहब, घर से
3: चलिए।
5: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं, आंखें खोलो बेटा।
3: कंपाउंडर
6: जी, ये लीजिए दवा का बक्सा।
3: लो।
6: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है और...
3: कोई भी दवा बेकार है।
0: डॉक्टर साहब,
6: डॉक्टर साहब,
0: नहीं।
3: कंपाउंडर
6: जी,
3: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
6: जी,
3: जान निकले काफी देर हो चुकी है।
5: नहीं,
3: ऐसा करो, इसकी माँ को तुम
0: जाओ। डॉक्टर साहब,
3: कुमार स्वामी साहब, धीरे से काम कीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
0: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फिकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
7: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
3: कंपाउंडर चुप रहो, जो बदतमीजी है।
7: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
3: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
7: चलो
3: चलो
5: राजा बेटा।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये तो तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा और रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा।
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: कैसे आप? अरे डियर भारती, तुम आ गई। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं। उमा
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ, अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
1: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
1: आइए, चलिए चलिए।
0: भाटी, तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती हो,
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनतकश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है।
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
4: सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो?
4: बड़ा अन्याय हुआ है। आरोग स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किवाड़ तोड़ डाली और भीतर
1: गजब हो गया। हे
4: भगवान,
0: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
4: अरे कोई है? राजू को

0: ए, कोई भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डराती है, हटा पीछे।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए नखो, चलाओ पत्थर।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
0: सो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो, डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
2: आइए आइए आइए।
3: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
2: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
3: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
4: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
5: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले ही वहां जाना ठीक नहीं था।
4: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
3: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
4: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
3: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
5: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना। हाँ?
4: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
5: जरूर जरूर।
4: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
5: सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।

0: जासूस रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हूँ?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये माँ।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी।
1: सदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। झारखंड राज्य युवा आयोग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। 25 किलोमीटर के साइकिल रेस में राजगंज धनबाद के रोहित कुमार रवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
3: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया। उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था। तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
3: हैं। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ, वो
3: आप तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
3: तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
3: वैसे जैसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से हम कह सकते हैं।
3: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
3: एक व्यापक दृष्टिकोण,
2: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब बापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ

0: गई थी और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का
1: बिल्कुल
0: और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्धसत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है। पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसे कुछ चुनिंदा रोल्स है जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है। मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो

0: नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा, इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ, वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे बॉस के जो मालिक थे, उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा, तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है। उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये। हम लोग बंबई आए, और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था, वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमिडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी।
0: एक 1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे, और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह
0: फिर
1: वाह
0: एक
1: वाह।
0: सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे, कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे, इस तरह से था। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर तारा। पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं और
0: हाँ
1: रातों
0: हाँ
1: रात बंदा स्टार बन
0: स्टार
1: जाता
0: बन
1: है
0: जाता है, करेक्ट
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है। और
0: राइट।
1: यहां अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या
0: क्या
1: धमाका हो
0: हुआ
1: चुका है।
0: है, करेक्ट।
1: वाह।
0: उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे, तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहां पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था, तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने
0: उस
1: फोन आ रहे हैं
0: इतने फोन आने लगे,
1: तुम्हारे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-6 7-7 महीना 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर
1: जी
0: बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था, और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है 1 हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
0: एक्चुअली।
1: करता
0: तो 1 हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है, कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है। पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा, हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूं, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे, और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ, तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट

0: कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था, मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: अरे सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार, तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपरहिट था, और ये मैं बात कर रही हूं 91-92 की।
1: जब वो
0: सड़क
1: बहुत बड़े स्टार बन
0: बहुत बड़े
1: चुके थे।
0: स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: तब
0: थी,
1: उतनी सिस्टमेटिक इंडस्ट्री नहीं थी।
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था, और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर
1: क्या
0: हुआ
1: बात
0: करते थे।
1: है, क्या
0: ये
1: बात
0: टू
1: है।
0: थाउजेंड थ्री फोर की बात कह
1: खुद
0: रही
1: ही
0: हूं मैं।
1: डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं
1: और को
0: नहीं
1: दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले,
1: वाह,
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं,
1: जी
0: उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक
0: हाँ
1: उनका बस
0: हाँ हाँ
1: था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको।
0: बहुत मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी,
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ, वो बड़ी
1: समझदार
0: थी,
1: थी।
0: समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है,
1: बिल्कुल,
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो दो तीन दिन, एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी, वैसे देते थे। क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा। ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे, तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे। तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था? बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना, वो मम्मी बनाती थी,
1: अच्छा, तो उससे
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले हैं।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था। मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गाँव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर डिसीजन मेकिंग। हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स। कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था, यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था। तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख, जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली। तो उन्होंने कहा, अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था, कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर, वो एक एक हफ्ते के लिए उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा,
0: ये फिल्में देखनी है,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे। तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह
0: में
1: वाह,
0: जहां पर भी वो जाते थे। राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है, जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है
1: वाह,
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं।
1: क्या
0: उसमें
1: बात है,
0: फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, ये डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना। तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसठ है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुन दा के साथ

0: सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं। तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गए, डॉक्टर अनिल अवचट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: बाबा
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। बस ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं
1: वाह
0: गए।
1: वाह
0: बिल्कुल
1: वाह,
0: बिल्कुल, डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में एक छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे, और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह
0: मैं इनके
1: वाह,
0: साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा। तो ये
1: हाँ
0: सबको खिलाते थे, और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी, इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता
0: हमेशा
1: था।
0: कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता
1: क्या बात
0: था।
1: है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहां बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा
0: हाँ
1: जल्दी आ जाना सात समंदर
0: हाँ
1: पार से,
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लगनाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निरू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था।
0: नाटक करके, जो नाटक जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
1: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब,
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
1: हाँ हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो पापा ने कहा जरूर क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए, और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त

0: के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निळू फुले, पापा, तनुजा,
1: कमर्शियल
0: मोहिनी
1: सिनेमा
0: हट्टंगडी,
1: की इतनी
0: कमर्शियल,
1: बड़ी
0: एग्जैक्टली
1: एक्ट्रेस.
0: हाँ हाँ ये सब लोग वहाँ पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका. और उसके बाद ये सब लोग जहाँ ऑडियंस एग्जिट होती है वहाँ पर झोला लेके खड़े रहते थे,
1: वाओ.
0: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे. सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था. और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे.
1: ये कितना बड़ा मुहिम,
0: बहुत
1: मतलब
0: ही
1: ये अद्भुत
0: बहुत
1: काम
0: ही.
1: रहा उस जमाने के
0: तो
1: हिसाब से.
0: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूं, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं. और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है. और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ. इस
1: वाह.
0: तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की. इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे. हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड. और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया. तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं. तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था. और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था. वो बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे. तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया,
1: गजब.
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो. तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम. उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे. तो पापा ने कहा ठीक है. उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना
1: क्या
0: चाहिए.
1: बात है.
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी. उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा
1: बाप रे
0: किया गया
1: बाप.
0: फॉर द म्यूजियम.
1: म्यूजियम.
0: और ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है. तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए. तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है.
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं। और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की ज़रूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो CM साहब को फ़ोन लगा लिया, दिल्ली में फ़ोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक

0: आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात ये लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप
1: ये
0: अभी
1: क्यों कर
0: इन्हें
1: रहे
0: क्यों
1: हो।
0: दे रहे हो, 10,000 रुपये इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
1: वाह वाह,
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी, और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य, जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी, वो बिल्कुल एक जैसी थी। और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट
1: क्या
0: कि
1: बात,
0: इस घर में मैं पैदा हूं।
1: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहां मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी
0: करेक्ट
1: लगता है। वो
0: करेक्ट।
1: बताएं।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया। प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा, रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो। मम्मी का अभी नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
1: लो,
0: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय, 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था। इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था। तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त, और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है। बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली। तो पापा ने, कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है, जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज़ कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया, देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा, इस तरह से कुछ हुआ
1: और
0: था।
1: किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहां नजर आता है।
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा

0: नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे, इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना, नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता
0: उन्होंने
1: था
0: बहुत करीब से देखी हुई थी, तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उन उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था अंदर से।
1: बिल्कुल। यहां एक गाना सुनते हैं,
0: श्योर,
1: दो आंखें 12 हाथ का, ए
0: हाँ
1: मालिक तेरे बंदे
0: ऑफ
1: हम।
0: कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने देशवासियों से खेती की जमीन को रसायनों से दूर रखने और ज्यादा से ज्यादा खेती प्राकृतिक उर्वरकों के साथ करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस अपील का समर्थन करने और हर तरह से सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच दल का गठन किया गया है। रांची पुलिस को दोहरी कामयाबी मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र के कटियातू से अवैध हथियार और गोली के साथ पुलिस ने एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी अमन कुमार पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार शूटर पिछले 10 जून को जमीनी विवाद में गोलीकांड में शामिल था। वहीं तैमारा घाटी से रामपुर आ रहे एक बाइक सवार व्यक्ति को 4 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। लोहरदगा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री और सेवन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत साहिबगंज जिले में वृहद पल्स पोलियो टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों तक बूथ में पल्स पोलियो की खुराक दी जा रही है। कल से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप देंगे। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने जिले के सदर अस्पताल परिसर में 3 दिवसीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूं, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती। वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू, दिल भी खाली खाली है बहुत। तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्षा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते थे।

जब पहले पहल तुझे देखा था, दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज की छुअन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की कसम।

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आंखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज्मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आंखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आंखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क जो दिखता सबको है, मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान पर, किसी और सरजमीन में।

साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से, और आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और अब आइए सुनते अपने डाल्टनगंज के आकाशवाणी केंद्र से। और हम आपको बता दें, अभी से लेकर रात 11:10 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। जी हाँ श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में समय 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी, जिसके तहत आप जानेंगे अर्पणा सिंह से लगी वार्ता, विषय है पत्रकारिता में अवसर। 6:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। और 6:02 पर आप सुनेंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे मुर्गियों का दाना मिश्रण, फसल चक्र का महत्व। और इसी कार्यक्रम करी में वार्ता में आप सुनेंगे एकीकृत बाल सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र से महिलाओं बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएँ। वार्ताकार होंगी सोनी पांडे। और 6:30 से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन से सीधे रिले का प्रसारण आप सुनेंगे। और 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर पुनः हम आपको ले चलेंगे दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के आंखों देखा हाल। 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 9:00 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर पुनः हम आपको ले चलेंगे दिल्ली, जहां से आपको हम सुनवाएंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का। और 10:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अपने डाल्टनगंज के दर्शन। और 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली के अंदर से। और रात के 11:10 पर आज के सभा का समापन करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे 11:10 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। और अब आइए सुनते हैं पत्रकारिता में अवसर। वार्ताकार हैं अर्पणा सिन्हा, लेकिन उसके पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

पत्रकारिता का क्षेत्र और रोजगार की संभावनाएं। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचार पत्रों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। डिजिटलीकरण और बदलते परिदृश्य के चलते देश में मीडिया का क्षेत्र तेजी से

बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप 12वीं के बाद से ही कर सकते हैं। अगर आप स्नातक डिग्री प्राप्त की है तब भी आप आसानी से इस क्षेत्र में भविष्य बना सकते हैं। पत्रकारिता को हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आधुनिक युग में पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्र हैं, जिसमें पहला आर्थिक पत्रकारिता, आर्थिक जगत से जुड़ी खबरें इसके तहत आती हैं। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हुई थी। 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले भारत के पहले अखबार हिक्की गजट ने अपने पत्र के उद्देश्य के विषय में लिखा था, राजनीतिक और व्यापारिक साप्ताहिक सभी पार्टियों के लिए खुला है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं है। आज आर्थिक मुद्दे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि हिंदी में भी आर्थिक परिशिष्टों का प्रकाशन हो रहा है। दूसरा, संसदीय पत्रकारिता। संसद के दोनों सदनों, प्रादेशिक विधानसभाओं, परिषदों की कार्यवाही की खबर इसके तहत आते हैं। संसदीय पत्रकारिता करते हुए काफ़ी सावधानी बरती जाती है ताकि अवमानना का कोई प्रश्न ना उठे। अधिकतर अनुभव पत्रकारों को ही यह जिम्मेदारी दी जाती है। संसद की पत्रकार दीर्घा में देश के प्रतिष्ठित पत्रकार मौजूद रहते हैं। तीसरा, आपराधिक पत्रकारिता। अपराध जगत से जुड़ी खबरों के बारे में लिखना अपराध पत्रकारिता के तहत आता है। जो पत्रकार पुलिस बीट आपराधिक मामलों को देखता है क्राइम रिपोर्टर कहलाता है। हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाओं की खबर अपराध पत्रकारिता के तहत आती हैं। चौथा, महिला पत्रकारिता। महिलाओं से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन या उनके हित से जुड़ी कोई खबर महिला पत्रकारिता है। आज नारी जगत से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबारों में भी उनके लिए अलग से परिशिष्ट दिए जाते हैं, लेकिन अखबार में यह समय काटने या मनोरंजन का साधन ही बनकर रह जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार, फैशन, घर सजाने, पतियों को खुश रखने की कला आदि पर ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन इन सब के अलावा विज्ञान, खेल, राजनीतिक साहित्य आदि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनसे संबंधित कुप्रथाओं, उनके शोषण, उत्पीड़न आदि खबर रखना ही सही मायने में महिला पत्रकारिता है। पांचवा, बाल पत्रकारिता। बच्चों से जुड़ी गतिविधियों की पत्रकारिता बाल पत्रकारिता है। उनके जिज्ञासाओं की शांति के लिए रंग बिरंगे मनोरंजक रूप में उन्हीं की भाषा में पत्र पत्रिकाएं होनी चाहिए। बच्चों के लिए हमेशा से पत्रिकाएं निकलती रही हैं। बालक सुमन, चंपक, सौरभ, नंदन, चंदा मामा, पराग, बाल भारती आदि कई पत्रिकाएं विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निकाली जाती रही हैं। लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में इनके लिए साप्ताहिक, मासिक परिशिष्ट निकाले जाते हैं। स्वास्थ्य पत्रकारिता। जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे लोगों के लिए अहम होते हैं। स्वास्थ्य पत्रकारिता केवल मेडिकल की ही नहीं बल्कि मेडिको सोशल पत्रकारिता भी कही जाती है। यह सिर्फ समाचार ही नहीं बल्कि विचार और पुनर्विचार का भी महत्व होता है। स्वास्थ्य पत्रकारिता के लिए तकनीकी और सही जानकारी बहुत जरूरी है। चिकित्सा जगत की कोई भी जानकारी अधूरी या गलत जानकारी जानलेवा या भयावह साबित हो सकती है। सातवां, खेल पत्रकारिता। खेल जगत में लोगों की रुचि रहती है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय स्तर के खेल और खिलाड़ियों की खबर देने के साथ साथ इस क्षेत्र में चल रहे पहल, परिवर्तन और वाद विवाद की खबर देना भी खेल पत्रकारों का काम है।

0: आठवां विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान मानव जीवन को प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसमें जल थल और वायु जगत में नित होने नई खोजों हलचलों की खबरें देना विज्ञान पत्रकारिता के तहत आता है। नौवां कला संस्कृति और साहित्य पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता का संबंध पुराना है। इसमें कला संस्कृति और साहित्य जगत की सारी खबरें आती हैं। सभी मीडिया इसके लिए स्थान सुनिश्चित रखती हैं। दसवां ग्राम्य पत्रकारिता। हमारा देश गांव का देश है। गांव की ओर गांव के लिए खबर हमारे पूरे देश के लिए मायने रखती है। उनकी जरूरतों और विकास से जुड़ी मुद्दे सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। गांवों से जुड़ी खबरों की जरूरत के बावजूद आज बाजारवाद में ग्राम्य पत्रकारिता का स्थान मीडिया में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ग्यारहवां राजनीतिक पत्रकारिता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पत्रकारिता इसका चौथा स्तंभ है। राजनीतिक से जुड़ी खबरें आम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। हर मीडिया हाउस में ना सिर्फ राजनीतिक एक अलग बीट होता है बल्कि बड़े प्रकाशनों में तो महत्वपूर्ण दलों के अलग अलग बीट होते हैं। बारहवां विदेशों की पत्रकारिता। देश की खबरों के साथ साथ विदेशों की खबरें भी हमें पत्रकारिता के माध्यम से ही पता चलता है। इससे व्यापार आयात निर्यात राजनीतिक मनोरंजक आदि हर तरह की खबरें होती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न कोर्स उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज की विभिन्न संस्थान यूनिवर्सिटी कराते हैं। इन संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया एंट्रेंस बेस्ड मेरिट बेस्ड और डायरेक्ट मोड में होती हैं। पत्रकारिता के प्रमुख संस्थानों की लिस्ट निम्नलिखित हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया बेंगलुरु छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। इसके अलावा भी देश भर में विभिन्न संस्थान मौजूद हैं जहां से आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस क्षेत्र में फीस अलग अलग कोर्सेज के अनुसार अलग अलग निर्धारित होती हैं। जहां सरकारी संस्थान में कम फीस ली जाती हैं वहीं प्राइवेट संस्थान में सरकारी के मुकाबले अधिक फीस होती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कोर्स करने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 15,000 तक है हो सकती है। अनुभव बढ़ने के साथ ही आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती जाती है। कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न कंपनियों के लिए कॉपी राइटिंग विज्ञापन राइटिंग कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर जर्नलिज्म वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार की ओर से भी भर्ती निकाली जाती हैं जिसमें भाग लेकर आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी कि आजकल युवा वर्ग इस क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और अपने रोजगार के साधन को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।
1: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आप अर्पणा सिन्हा से ली गई वार्ता। विषय था पत्रकारिता में अवसर। और अब इसी वार्ता के साथ आइए एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए परिचालनगत दिशा निर्देश जारी करेंगे। यह शुभारंभ एनीमिया मुक्त भारत से एनीमिया मुक्त भारत अभियान में परिवर्तित होने के कारण एनीमिया के विरुद्ध देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा कल शंकरपुर मथुरापुर रेल खंड में आवश्यक ट्रैफिक अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इसके लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 तक 3 घंटे 30 मिनट का ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के कारण 3 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। लोहरदगा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री और सेवन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चतरा जिले की लावालौंग पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए आज 912 किलोग्राम अवैध डोडा जब्त किया है। बरामद खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1,36,00,000 रूपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार इस खेप को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही तस्कर मौके से फरार हो गए। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर शेष अधिकांश जिलों में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने संबंधित जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हो चुके हैं। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज किस खेती बारी कार्यक्रम के तहत आप चर्चा में जानेंगे मुर्गियों का दाना मिश्रण, और इसी चर्चा के तहत आप जानेंगे फसल चक्र का महत्व। और श्रोताओं, आज के वार्ता में आप सुनेंगे सोनी पांडे से ली गई वार्ता। विषय है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र से महिलाओं बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं। वार्ताकार हैं सोनी पांडे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं मुर्गियों का दाना मिश्रण। जी श्रोताओं, मुर्गी पालन काफी लाभदायक व्यापार व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। इसकी सफलता मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो संतुलित और पौष्टिक आहार पर ही निर्भर करती है। मुर्गियों को उनकी आयु और उत्पादन क्षमता के अनुसार ही उचित दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए, और इसी से उनकी वृद्धि तेज होती है, अंडा उत्पादन बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, साथ ही साथ मांस की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इसलिए मुर्गियों के लिए संतुलित दाना तैयार करना ज्यादा आवश्यक है। मुर्गियों के दाने में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और स्वच्छ पानी का सभी का श्रोताओं संतुलित होना आवश्यक है। प्रत्येक पोषक तत्व शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। ऊर्जा से मुर्गियों को कार्य करने की शक्ति मिलती है, तो प्रोटीन मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण में सहायक होती है। वहीं खनिज और विटामिन शरीर के कई जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करती है। श्रोताओं, दाना मिश्रण की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऊर्जा देने वाले प्रमुख पदार्थ में यदि दाना में देखा जाए तो मक्का हो जाता है, ज्वार है, बाजरा है, चावल का टूटा हुआ जो भाग है यानी कि टूटा चावल भी कह सकते हैं, टूटा चावल, गेहूँ, ये काफ़ी ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं और इन्हीं दानों से मुर्गियों को ऊर्जा मिलता है, और साथ ही साथ इनके शरीर का तापमान भी नियंत्रित होता है। और जब हम बात करते हैं प्रोटीन युक्त पदार्थ के दाना मिश्रण की, तो श्रोताओं इसके लिए सोयाबीन खल्ली, मूंगफली की खल्ली, सरसों की खल्ली सीमित मात्रा में, सूरजमुखी की खल्ली, मछली का चूर्ण, मांस और हड्डी का चूर्ण इन्हें दिया जाता है, जिससे कि इन्हें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सके। क्योंकि प्रोटीन जो होता है श्रोताओं शरीर की वृद्धि, मांस का निर्माण और अंडा उत्पादन में काफ़ी सहायक साबित होता है, और उसके लिए बहुत ही आवश्यक तत्व के रूप में जाना जाता है। खनिज पदार्थ की हम बात करें श्रोताओं, तो इसके लिए है कि चूना पत्थर, ड्राई कैल्शियम फास्फेट और नमक, और ये जो तीन पदार्थ है खनिज के श्रोताओं, ये हमारे मुर्गियों के हड्डियों की मजबूती, अंडे को खोल को मजबूत बनाने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। वहीं विटामिन और सूक्ष्म खनिज मिश्रण के लिए विटामिन ए, डी, ई, के दिया जाना भी चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स तथा मिनरल मिक्सचर से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है श्रोताओं, और इससे उत्पादन भी बेहतर होता है। श्रोताओं, यदि संतुलित दाना मिश्रण की हम बात करें, अगर 100 किलोग्राम को अगर हम लें तो मक्का का 50 किलोग्राम, सोयाबीन की खल्ली 25 किलोग्राम, गेहूँ चोकर की 8 किलोग्राम, और साथ ही साथ चूना पत्थर 8 किलोग्राम, DCP 2 किलोग्राम, नमक 0.5 किलोग्राम यानी कि आधा किलो, मिनरल मिक्सचर 0.5 किलोग्राम यानी कि श्रोताओं आधा किलो आप समझ सकते हैं, और विटामिन्स प्रीमिक्स जो होता है वो आवश्यकता अनुसार आप मुर्गियों को दे सकते हैं। तो ये थे श्रोताओं करीबन 100 किलोग्राम के संतुलित आहार जो मुर्गियों को दिए जाते हैं, और इस जब आप मुर्गियों के लिए 100 किलो संतुलित आहार बनाते हैं तो उसमें इस प्रकार से इन तत्वों का उतनी मात्रा में होना आवश्यक हो जाता है। यह मिश्रण जो श्रोताओं हैं जो मुख्य रूप से जो समान अंडा देती है उसके लिए काफ़ी अच्छी है, और यदि आयु के अनुसार

आपको संतुलित आहार देना है श्रोताओं, तो चूजा आहार के लिए अगर 8 सप्ताह का अगर चूजा है तो उसके लिए प्रोटीन 20 से 22 ग्राम 22%, जिसके लिए उन्हें ऊर्जा करीबन 2900 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है श्रोताओं, और इसी हिसाब से इनका शरीर का तेजी से विकास भी होता है। और श्रोताओं यदि देखा जाए तो लेयर आहार के लिए प्रोटीन 16 से 18%, कैल्शियम जो है 3.5 से 4%, 20 सप्ताह के बाद के लिए देने की जरूरत पड़ती है। दाना खिलाने की भी कुछ बातें हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है श्रोताओं। मुर्गियों को जब भी दाना दे तो हमेशा ताज़ा और स्वच्छ दाना दे, दाना सूखी और साफ जगह पर ही इन्हें सुरक्षित रखें। फफूंदी लगा या खराब दाना कभी न खिलाएं। हर समय स्वच्छ एवं ठंडा पानी ही दे। दाना धीरे धीरे बदले, अचानक परिवर्तन न करे। समय पर ही भोजन दे। जी हाँ, एक नियम बना ले कि हमें अपने मुर्गियों को उक्त समय ही भोजन देना है, तो नियमित समय पर ही मुर्गियों को भोजन दे सोता। और दानों के साथ साथ हरा चारा जिसमें कि बरसीम, लूसन, नेपियर घास या हरी सब्जियों की पत्ती देने से विटामिन और खनिजों की भी प्रायः मुर्गियों में पूर्ति हो जाती है श्रोताओं। इससे मुर्गियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और दाने की लागत में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है, कुछ कम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ही मिलता है। तो संतुलित आहार से लाभ की बात हम करते हैं श्रोताओं, तो मुर्गियों में तेज वृद्धि होती है, अंडा का उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, मजबूत अंडे का खोल प्राप्त होता है श्रोताओं, और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, मृत्यु दर में भी कमी आती है। अचानक जो मुर्गियों का जो मरना होता है, मृत्यु होती है, उसमें काफ़ी कमी हो जाती है, और साथ ही साथ मांस की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, और हरे चारे से देने से कहीं ना कहीं एक आर्थिक लाभ भी होता है और मुर्गियों के पालने से भी आर्थिक लाभ हमें प्राप्त होता है। हाँ, कुछ बातों का ख्याल रखना भी आवश्यक है, कुछ बातों पर सावधानी देना भी आवश्यक हो जाता है श्रोताओं। इसमें मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो दाना हमेशा गुणवत्ता वाला ही खरीदें और उन्हें दें। नमी वाले स्थान पर दाना या दाना का मिश्रण न रखें। समय समय पर फीडर और पानी के बर्तनों की भी सफाई करते रहें। जी हाँ श्रोताओं, मुर्गियों को जब आप पाल रहे हैं या मुर्गियों को जब भी आप पालते हैं तो साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ समय समय पर पशु के चिकित्सक से भी सलाह लें और उन्हें विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट जो होता है वो भी दें। दाने में जहरीले पदार्थ या फफूंदी लगे ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित कर लें। और टीकाकरण की भी बात आती है तो मुर्गियों को टीकाकरण भी जरूर कराएं। तो देखा जाए श्रोताओं, तो मुर्गी पालन में संतुलित दाना का मिश्रण मुर्गियों के वृद्धि, मुर्गियों के अंडा, मुर्गियों के मांस, इन सभी चीज़ों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है या है भी मुर्गी पालन में। और इन्हीं संतुलित आहार से मुर्गियों को ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन तथा स्वच्छ पानी देने से मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अंडा और मांस का उत्पादन बढ़ता है, पालन की लागत कम होकर लाभ में बढ़ोतरी हो जाती है। प्रत्येक मुर्गी पालक को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मुर्गियों के आयु और उसके उत्पादन के अनुसार ही उन्हें वैज्ञानिक दाना मिश्रण का उपयोग करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और बेहतर आर्थिक लाभ इन मुर्गियों से लिया जा सके। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता हो तो मुर्गी पालन काफ़ी एक लाभकारी या लाभदायक व्यापार के रूप में जाना जाता है, लेकिन ज़रूरत इसमें है थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जानकारी, अन्यथा नुकसान की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। और यदि थोड़ी सी जानकारी लेकर कार्य करें तो निश्चित रूप से इससे बेहतर लाभ हमें प्राप्त होता है। आर्थिक आज़ादी की जो हम बात करते हैं वह इन मुर्गी पालन से हमें प्राप्त होता है।
तो श्रोताओं, मुर्गी के पालन जब भी आप करते हैं तो उनके दाना मिश्रण का ख्याल रखें, और जब आप दाना मिश्रण का ख्याल रखेंगे

0: बेहतर रहेगा, उससे ज़्यादा आपको उत्पादन की भी प्राप्ति होगी। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें मुर्गियों का दाना मिश्रण, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं सोनी पांडे से लगी वार्ता। विषय है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र से महिलाओं बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं।
1: नमस्ते श्रोताओं, आज मैं एक ऐसे विषय पर जानकारी साझा करने जा रही हूँ जो हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे राष्ट्र के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। विषय है आंगनबाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, यानी ICDS के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य पोषण और प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ना है। आज देश के लाखों गांवों और शहरों में आंगनबाड़ी केंद्र समाज सेवा का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम पोषण सुविधाओं की बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराते हैं। हमारे देश में आज कई ऐसे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। प्राप्त पोषण न मिलने के कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खिचड़ी, दलिया, दूध, अंडा, फल तथा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को भी अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें यह समझाया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान संतुलित भोजन कितना आवश्यक है। आयरन, कैल्शियम और विटामिन युक्त भोजन के बारे में जानकारी देकर उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया जाता है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जाँच की जाती है। उन्हें समय पर टीकाकरण, दवाइयाँ और स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। सुरक्षित प्रसव, स्वच्छता और नवजात शिशु की देखभाल के बारे में भी जागरूक किया जाता है। बच्चों का भी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। उनका वजन, लंबाई मापी जाती है ताकि उनके विकास की सही जानकारी मिल सके। यदि किसी बच्चे में कमजोरी या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की एक और महत्वपूर्ण सेवा है टीकाकरण कार्यक्रम। पोलियो, खसरा, तपेदिक और अन्य गंभीर बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा के लिए समय समय पर टीके लगाए जाते हैं। यह कार्य बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्रोताओं, आंगनबाड़ी केंद्र केवल स्वास्थ्य और पोषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का भी आधार माना गया है। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का पहला कदम आंगनबाड़ी केंद्र ही होते हैं। यहाँ बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। उन्हें कविता, कहानी, चित्र, गीत और नैतिक शिक्षा के माध्यम से सीखने की प्रेरणा दी जाती है। बच्चों को साफ सफाई, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की भी शिक्षा दी जाती है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, अर्थात विद्या का धन सबसे बड़ा धन है। इसलिए बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने में भी कार्य करते हैं। यहाँ महिलाओं को स्वच्छता, परिवार कल्याण, बेटी शिक्षा, महिला अधिकार, पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। कई स्थानों पर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई या छोटे घरेलू उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। आज समाज में महिला सशक्तिकरण की बहुत चर्चा होती है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं को सही जानकारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। इस दिशा में आंगनबाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों

0: को जागरूक करने का कार्य भी करती है। वे बच्चों के पोषण, स्वच्छता और टीकाकरण के बारे में जानकारी देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के महत्व को समझें और उनके कार्यों में सहयोग करें। समाज के हर वर्ग तक इन सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। यदि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है या कोई महिला स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है तो यह केवल एक परिवार की ही नहीं पूरे समाज की चिंता का विषय है। हमें यह भी समझाना होगा कि बच्चों और महिलाओं में किया गया निवेश वास्तव में देश के भविष्य में किया गया निवेश है। जो हर बच्चा स्वस्थ और शिक्षित होगा, हर महिला आत्मनिर्भर और जागरूक होगी, तभी भारत एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। अंत में मैं अपने विचारों को संस्कृत के एक सुंदर श्लोक के साथ समाप्त करना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रानु पश्यन्तु, कश्चिद् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े। इसी मंगल कामना के साथ श्रोताओं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सोनी पांडे से लिखी वार्ता भी आप सुन रहे थे। विषय था एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र से महिलाओं बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं। और अब श्रोताओं ये जानते हैं फसल चक्र का महत्व। जी हाँ श्रोताओं, फसल चक्र आज के आधुनिक युग में खेती का सुरक्षा कवच और कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो यह पारंपरिक खेती पद्धति नहीं है। एक ही खेत में बार बार फसल लेने से मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है और बीमारियां उस खेत में या फिर जो भी आप फसल लगते हैं तो उसमें लग जाती है। वहीं जब हम फसलों को अलग अलग बार लगाते हैं तो कीड़ों से भी हमारी, बीमारियों से भी हमारी फसल की सुरक्षा हो जाती है। और अलग अलग बार लगाने को ही हम फसल चक्र कहते हैं। वैज्ञानिक सोच से यदि हम देखें श्रोताओं, तो साल में खेत में ज़्यादातर नाइट्रोजन सोखने वाली जो फसल है, गेहूं, धान जो लगाई जाती है मुख्य रूप से खेतों में, और अगले साल उसी खेत में नाइट्रोजन वापस लौटाने वाली जो फसल होती है वो दलहनी फसल होती है, जिसमें चना, मूंग या अरहर की बात हम करते हैं, लगाई जाती है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य और हमारे किसान भाई को मुनाफा देने के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ श्रोताओं, यदि हम एक ही खेत में बार बार धान को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे खेत से नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो घटती चली जाएगी। लेकिन जब हम अपने खेतों से धान लेने के पश्चात अगली बार हम अरहर की या चने की या मूंग की खेती करते हैं तो मिट्टी में पुनः नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह उपलब्ध हो जाती है। तो निश्चित रूप से इसे ही हम फसल चक्र कहते हैं और इससे मिट्टी में जो भी उर्वरा शक्ति की जो कमी हुई थी वो कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति हो जाती है। आज के समय में ज़्यादातर देखा जाए सोता हूँ तो रासायनिक खाद के ज़्यादातर उपयोग से जमीन जो है वो बंजर होती चली जा रही है। फसल चक्र का महत्व और भी इसमें बढ़ जाता है क्योंकि इसके कई लाभ श्रोताओं होते हैं। यदि देखा जाए तो इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है और प्राकृतिक पोषण की बात हम करते हैं, यानी कि सॉयल हेल्थ की बात हम करते हैं, तो इससे भी काफ़ी बेहतर होते चला जाता है। कई प्रकार के पौधों को जड़ें जो है वो मिट्टी की अलग अलग गहराइयों तक ले जाती है। गहरी जड़ें वाले फसलें जो हैं, जिसमें कि आप कपास या अरहर की हम बात करें, तो ये मिट्टी के निचले स्तर से पोषक तत्व खींचती है जिससे कि ऊपरी मिट्टी को इसका लाभ मिलता है। और वहीं दलहनी फसल की जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया, जिसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, वह हवा से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में उसे सुरक्षित करती है, स्थिर करती है। इससे यूरिया जैसे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम कम होती है। जी हाँ श्रोताओं, मिट्टी के स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो ऐसे पोषक तत्वों वाले जो पोषक तत्व हमारे मिट्टी में उपलब्ध कराए ऐसे पौधों को लगाना जरूरी हो जाता है। कीट और बीमारियों का भी चक्र कहीं ना कहीं जब हम फसल चक्र को अपनाते हैं तो इससे टूटती है, क्योंकि हर कीट या फंगस का कहीं ना कहीं एक पसंदीदा भोजन या उसका एक पसंदीदा प्लांट होता है, पौधा होता है। और यदि हम लगातार धान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि धान के कीड़े जो हैं वो खेत में उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर हम साल दर साल अलग अलग लगाते हैं, जैसे धान लेने के पश्चात हम अगर आलू की खेती कर दें या सरसों की खेती करते हैं, तो उन कीड़ों को अपना भोजन नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहते हैं श्रोताओं, जिससे कि हमें महंगी कीटनाशक दवाओं का खर्च बचता है। जो श्रोताओं, बार बार धान की फसल को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं हमें रासायनिक खादों की जरूरत पड़ती है, और वहीं अगर हम फसल चक्र को अपनाएं तो इसका काफ़ी हमको बेहतर लाभ मिल पाता है। खरपतवार की नियंत्रण की भी हम बात करें श्रोताओं, तो कई प्रकार के फसलों में देखा जाए तो कुछ खास खरपतवार जिसमें कि गेहूं के साथ साथ सांवा या फिर गुल्ली डंडा जैसे ज़्यादा खरपतवार उगते हैं, तो ऐसे में अगर हम फसल बदलने से खरपतवारों को बदलने का अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता श्रोताओं। लेकिन अगर कतारों में बोई जाने वाली फसल के बाद यदि घनी पत्ती वाली चारा फसल बोल दे तो ये जो कि वो धूप को रोक देती है, इससे कहीं ना कहीं खरपतवार की जो उपज है तो उनकी बढ़त में कमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं खरपतवार दब जाते हैं। बात आती है जल संरक्षण और मिट्टी की बनावट की श्रोताओं, तो एक ही फसल लेने से मिट्टी के भीतर एक कठोर परत बन जाती है जिससे कि पानी जो है वो नीचे चला जाता है, और फसल चक्र में गहरी और उथली जड़ों वाली फसलों के मिश्रण से मिट्टी जो है वो भुरभुरी और हवादार बनती है। इससे मिट्टी की जल सूखने की क्षमता बढ़ती है और सिंचाई में भी कम पानी खर्च होता है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, यदि एक ही प्रकार का फसल लेते हैं तो एक मिट्टी जो वो हार्ड बनती है, लेकिन अगर अलग अलग और गहरी और उथली जड़ों का उपयोग करेंगे तो इसका लाभ हमें मिलता ही है। और श्रोताओं, यदि देखा जाए तो आर्थिक सुरक्षा और जोखिम की हम बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में यानी कि उसके बाजार की हम बात करें श्रोताओं, तो हमेशा भाव का जो है उतार चढ़ाव बना रहता है, मौसम का जोखिम भी हमेशा रहता है। तो हमारे किसान भाई यदि एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं और यदि वो किसी कारणवश खराब हो जाए तो हमारे किसान भाई को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि फसल चक्र अपनाते हैं तो साल में 2 से 3 अलग अलग फसल इन्हें मिलती है। यदि एक फसल का दाम बाजार में कम भी मिलता है तो निश्चित रूप से दूसरी फसल से प्रायः उसकी भरपाई हो जाती है। इससे हमारे किसान भाई को पूरे साल नियमित आय होती रहती है। श्रोताओ, वैज्ञानिक फसल के यदि हम बुनियादी सिद्धांतों की बात करें तो इसके लिए एक आदर्श और सफल फसल चक्र को तैयार करना जरूरी हो जाता है। और इसके लिए श्रोताओं, जड़ की गहराई, जी हाँ श्रोताओं, गहरी जड़ वाली फसल के बाद हमेशा उथली यानी कि कम जड़ वाली फसल लगाएं। पोषक तत्वों की मांग की हम बात करें तो अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम चाहने वाले जो फसल होते हैं उसका उपयोग करें। पानी की आवश्यकता की बात हो तो अगर जो आप पूर्व में आप अधिक पानी वाली फसल लगाए हैं तो बाद में सूखा सहने वाली फसल लगाएं, जिसमें कि बाजरा या चना की खेती कर सकते हैं। फसल चक्र में कम से कम एक बार दलहनी यानी कि फलीदार फसल को जरूर शामिल करें। साथ ही साथ श्रोताओं, यदि देखा जाए तो फसल पर कोई विकल्प नहीं है, वहीं मजबूरी और समझदारी दोनों शामिल होती है, क्योंकि जलवायु का परिवर्तन और घटते भूजल के कारण आज के इस दौर में रासायनिक अनाधुन जो खेती हो रही है वह टिकाऊ नहीं हो पा रही है। फसल चक्र यदि हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो अपनी लागत का करीबन 30-40% तक वह कम कर सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, यदि आप फसल चक्र को अपनाते हैं तो आपकी जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन को उपजाऊ बनाए भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर ज़मीन ऊसर हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, तो भी उस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं है। और यह उपजाऊ तभी बने रहेगी जब हम फसल चक्र का, प्राकृतिक खेती की जो हम बात करते हैं उस पर जब हम निर्भर रहते हैं तभी हमको इसका लाभ मिल पाता है। और यह फसल चक्र है श्रोताओं, यह कम लागत में टिकाऊ और ज़्यादा मुनाफे वाली खेती देने का सरल और प्राकृतिक मंत्र है। जी हाँ श्रोताओं, यदि नियमित रूप से हम फसल चक्र को अपनाएंगे तो इसका लाभ हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता है। बस ज़रूरत है श्रोताओं उन बातों को जानने का जिससे हमारा समाज, हमारा देश का कल्याण हो सके और हमारा लाभ प्राप्त हो सके। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या दे रहे हैं क्या नहीं, इन ज़रूरतों को, इन बातों को जानने का, और इसमें फसल चक्र काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटक है अपने उपजाऊ ज़मीन को देने का। और यह हम रासायनिक तत्वों से नहीं, प्राकृतिक तत्वों से ही हम वापस दे सकते हैं। तो श्रोताओं, अब इसी फसल चक्र के साथ आज के इस खेतीबाड़ी सभा में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

की शौर्य गाथा शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। सात बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। लेखक राजेश भदौरिया, निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8 बजकर 15 मिनट पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9 बजकर 30 मिनट पर। कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे सुनिए विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर सुनिए वंदनवार। सुबह 6 बजकर 30 मिनट और शाम 6 बजकर 30 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6 बजकर 35 मिनट पर। कल प्रसारित होगा भाग 234। सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर सुनिए संगीत सरिता। इसमें सुनिए विविध भारती के खजाने से गायिका विदुषी डॉक्टर प्रभा आत्रे से बातचीत। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकते हैं शाम 6 बजकर 45 मिनट पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7 बजकर 30 मिनट पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8 बजकर 15 मिनट और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। लेखक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर। आज के फनकार का समय रहेगा 9 बजकर 30 मिनट का।

कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है उलझन। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए झलकी ब्लैक एंड व्हाइट, लेखक महावीर सिंगल, निर्देशन आनंद किशोर माथुर का। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार, कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। छाया गीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आलेखो स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन्द्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अभी आपने पी के फिल्म का गाना सुना, सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा था सोनन किरकिरे ने, संगीत शांतनु मोइत्रा का था। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में 20 साल बाद फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, आप सुधी श्रोताओं के लिए आज हम चुन लाए हैं एक प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सी आर व्यास। व्यास जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: व्यास जी, आपके षष्ठी पूर्ति समारोह में श्री पीएल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल
3: है? हाँ, वो तो बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है।
2: बहुत सुंदर। व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
3: 10 साल से शुरू किया।
2: 10 वर्ष की आयु से?
3: 10 वर्ष की आयु से। लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था। जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
2: जी
3: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंद राव भातम्ब्रेकर।
2: अच्छा।
3: उससे मैं तालीम पाया, 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
2: जी।
3: अच्छी टाउन करके जो हाँ वहाँ जहाँ रहते थे वो
2: जी,
3: वो तो वहाँ मैं तालीम पाया, और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के गायक है।
2: अच्छा। लेकिन जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं।
3: हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन
2: जी
3: थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं बम्बई आया, मेरा उम्र था 18 साल की
2: जी,
3: और तब मैंने ग्वालियर
2: घराने के
3: राजा रामबा पराडकर जो थे मेरे गुरु जो कैलाशवासी पंडित राजा रामबा पराडकर से तालीम शुरू किया।
2: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है।
3: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में
2: जी
3: अनेक ख्याल गा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: कोई गायक वो ग्वालियर घराने में ऐसा रहते कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है, उसे वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे।
2: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
3: ये
2: सुना कि बहुत
3: उपजंग तो हर घराने में रहती है।
2: अच्छा।
3: कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा,
2: जिसके जरा हमें समझाते हुए
3: इसको थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करना पड़ेगा।
2: वैसे
3: तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी

0: रे ऐसा वो ले रे लगाने का जो तरीका है ना,
1: जी
0: ये एक उपजांगे समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः
1: जी
0: ये एक सुर का हो गया।
1: जी
0: अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई
1: अच्छा
0: उपज का एक सुरों का पुंज होता है,
1: जी
0: जैसा केदार में लेंगे मम रे सा सा,
1: जी हाँ
0: म रे सा रे सा सा। अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा जब उसकी तान बनती है ना, म रे सा रे सा सा, म रे सा रे सा सा रे सा सा, प प म रे सा सा रे सा सा, ध ध ध प प म रे सा सा सा। ये जो उपज है ना वो हमेशा के लिए ऐसा एक
1: अच्छा
0: रूल था, यानी नियम था
1: कह
0: वो
1: जाता
0: घराने में, कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए,
1: जी हाँ।
0: तब उपज की पूर्तता हो गया।
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: हाँ ये सब
1: विलंबित
0: बातें थी।
1: स्वरों को
0: आलाप
1: समझा
0: बोल,
1: जाता
0: आलाप पहले बोल, आलाप फिर बोल अंकित कुछ ताने,
1: कुछ
0: फिर
1: ख्याल
0: बड़द
1: पर ज्यादा उनका
0: बोल।
1: ध्यान रहता था,
0: ख्याल ख्याल हाँ
1: ख्याल।
0: ख्याल तो याद करना बड़ा ना, ख्याल तो पहले, अगर
1: जी
0: ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था ना,
1: जी
0: तो पहले वो ख्याल की बंदिश उसकी स्थाई दो दफे गा के लेंगा, बाद में अंतर दो दफे गाएंगे,
1: जी
0: फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चले गाएंगे। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे। अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की
0: हाँ
1: है,
0: बहुत
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना पड़ेगा मुझे,
1: हाँ।
0: जगन्नाथ बाबा पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास,
1: जी हाँ
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी
0: खां साहेब विलायत हुसैन खां साहब के पास, बहुत सालों सीखते थे।
1: जी
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए मुझे करके,
1: अच्छा अच्छा
0: लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि भाई वो बहुत भावनिक गाते थे
1: अच्छा
0: खुद बुआ साहब,
1: जी
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना का क्या होता है अभी, और ये ग्वालियर में नहीं था, आगरा में नहीं था, तो ये तो बताने की बात है। हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है, ए जमेली बोली जो बागोला बैगोंदेला ओरे वाले निया, जमेली बोली जो, ये ग्वालियर का पेताड़ा ही ऐसा है। वो
1: जी
0: सब गायकी ऐसी जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की जाएंगी, पहले ख्याल गाएंगे फिर ऐसे ही गाते जाएंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है। जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेगा ना, तो वो एक भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है।

0: सुर लगाने का तरीका और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है। तो इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बुआ साहब के पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख भी जाए, प्रसिद्धि भी पाए।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार है वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े टैलेंटेड हैं
1: जी।
0: लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट्स है मेरे अच्छा। सामने
1: आप और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य अच्छा, बड़ा उज्जवल है हमारा देश का,
0: बहुत अच्छे अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं
1: सीख रहे हैं,
0: लेकिन इतना

0: बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए उसने, देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में मैं इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार।
0: भी आपका नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पंडित C.R. व्यास से की गई भेंट वार्ता। भेंट वार्ता कर रहे राम सिंह पवार। ये भेंट वार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आज पंडित C.R. व्यास हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार हैं जो हमने उनसे की गई भेंट वार्ता में सुने, और उनका गायन भी हम सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं पंडित C.R. व्यास का गाया राग बिहाग। बंदिश के बोल हैं ले जा रे जा पथिकवा। हारमोनियम संगत अनंत राणे की, तबला संगत विभव नागेशकर। राग बिहाग, गायक पंडित C.R.

0: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
1: वो कहाँ है?
0: मिठाई।
2: आरबीआई कहता है
3: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समुद्र से लेकर आकाश तक भारत सुरक्षित। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन के लिए जताया आभार। रिम्स की जमीन अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई, आरोपी बिल्डर गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 61 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचेगी दो बूंद जिंदगी की, लोगों से जन भागीदारी की अपील। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में सफलता, चतरा में 912 किलो डोडा बरामद, लोहरदगा से दो तस्कर गिरफ्तार, रांची में भी कार्रवाई। और बोकारो के गोमिया क्षेत्र में 30 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली स्थित आवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का श्रवण किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से समस्त देशवासियों से सीधा संवाद उनके जन जन के प्रति समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा के सदर पश्चिम मंडल टेकरा हातू ग्राम के बूथ संख्या 42 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक रूप से अनुश्रवण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। यह शुभारंभ एनीमिया के विरुद्ध देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2000

0: 1947 के दृष्टिकोण को साकार करने में गाँव की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रिम्स की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अपार्टमेंट निर्माण और बिक्री से जुड़े मामले में बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कंपनी पर रिम्स की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर फ्लैटों की बिक्री करने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से

0: सदर डीएसपी अमन कुमार पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार शूटर पिछले 10 जून को जमीनी विवाद में गोलीकांड में शामिल था। वहीं तैमारा घाटी से रामपुर आ रहे एक बाइक सवार तस्कर को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है।
1: बरामद अफीम के स्रोत के संबंध में जब उससे पूछताछ की गई के द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष उसके द्वारा अपने ही खेत में अफीम की अवैध खेती की गई थी। गत वर्ष से वो अपने पास अफीम संग्रहित करके रखा हुआ था। पूछताछ के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि पूर्व में भी वो अफीम की कई खेत की बिक्री कर चुका है। उसके द्वारा कुछ व्यक्तियों के भी नाम बतलाए गए जो कि खरीदार हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया गया तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु भी छापेमारी की जा रही है।
0: बोकारो के गोमिया क्षेत्र में हाथियों के बड़े झुंड ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। करीब 30 हाथियों का दल गांव में आसपास डेरा डाले हुए है। झुंड में 2 से 3 गर्भवती हथिनियां शामिल हैं, जिनके कारण उनके लंबे समय तक इलाके में रुकने और अधिक आक्रामक होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है।
2: इस झुंड में 2 से 3 गर्भवती जो हथनिया है, इस वजह से ये झुंड आक्रामक होने की संभावना है। खास तौर पर इसी वजह से एहतियात रखने की कि झुंड के पास ना जाए, सेल सेल्फी लेने पास में ना जाए, और जो रात के समय में भी अपने घर से बाहर ना निकले, आप कोई वन क्षेत्र में कोई गाड़ी या वाहन लेकर लाइट लेकर वहां ना जाए।
0: मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर शेष अधिकांश जिलों में गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने संबंधित जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। SGFI ने उत्कृष्ट आयोजन और खिलाड़ियों के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए झारखंड को 2 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। विभाग को पहला सम्मान सराहना पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया, वहीं दूसरे सम्मान के रूप में झारखंड को 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल के सर्वश्रेष्ठ आयोजक के लिए द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समुद्र से लेकर आकाश तक भारत सुरक्षित। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन के लिए जताया आभार। रिम्स की जमीन अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई, आरोपी बिल्डर गिरफ्तार, अन्य आरोपितों की तलाश जारी। झारखंड में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 61 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचेगी 2 बूंद जिंदगी की, लोगों से जन भागीदारी की अपील। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में सफलता, चतरा में 912 किलो डोडा बरामद, लोहरदगा से 2 तस्कर गिरफ्तार, रांची में भी कार्रवाई। और बोकारो के गोमिया क्षेत्र में 30 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
0: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो स्टील सिटी में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का तीरंदाजी टूर्नामेंट होने जा रहा है। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लंबोदर महतो ने बताया है कि अगस्त में होने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से 700 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हिस्सा लेंगे। यह बोकारो के लिए गौरव की बात है।
2: टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे और लगभग

0: 1000 खिलाड़ी सभी ग्रुप का मिलाकर लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आयोजन 18 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इसका आयोजन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में होगा। व्यवस्था निश्चित रूप से जैसा भारतीय तीरंदाजी संघ और झारखंड तीरंदाजी संघ का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो भी इस एनआरटी में भाग लेंगे निश्चित रूप से गाइडलाइन के हिसाब से।
1: राष्ट्रीय तीरंदाज बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की महासचिव एंजिला सिंह ने कहा है कि इस टूर्नामेंट से खेल के क्षेत्र में बोकारो की नई पहचान बनेगी।
2: वो लोग को देखना और वो लोग आना हम लोग के लिए बोकारो के लिए बहुत बड़ी बात। बच्चा लोग का वो लोग को देखने के बाद स्पोर्ट्स का जो एक जो अभी जो रुक गए हैं वो हमको लगता है कि एक अभी 20% नहीं, हम लोग 80% तक बढ़ जाएगा। उन लोग को देखे उन लोग का हिम्मत इतनी, एक लोग एक जो बोलता नहीं एक ओलंपिक खेलने वाला बच्चा आने वाला जो प्लेयर सब जब उन लोग को देखने के बाद बच्चा लोग अपने आप मन बढ़ना ही बढ़ना है बोकारो।
1: बोकारो सदर अस्पताल के सफाई कर्मी बकाया वेतन भुगतान को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मी छोटे कुमार ने बताया है कि कभी भी सफाई कर्मियों को नियमित वेतन नहीं मिलता है, बावजूद इसके उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
3: अभी फिलहाल हम लोग को एक महीना का वेतन दिया गया है अप्रैल का, अभी भी और दो महीना का वेतन अभी तक नहीं मिला है। इस लोग का ये आज 90 दिन का जो पैसा जो है अगर ये दे दिया जाता तो आज हम लोग हड़ताल पे बैठते ही नहीं। हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, वेतन अभी तक नहीं मिला है। यह हम लोग भी कितना मानवता झेलेंगे, हम लोग भी सबका बाल बच्चा है, पेट में तो दाना पानी जाएगा नहीं, तो खाली पानी पी के तो नहीं ना काम कर देंगे। हम तो बोल रहे हैं आप लोग जाके ये सिविल सर्जन से पूछिए, यहाँ का प्रबंधक से पूछिए कि पेशेंट जो आ रहा है उसका स्थिति क्या हो रहा है।
1: सफाई कर्मियों की हड़ताल पर सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा कुछ नेताओं की बात में आकर ये हड़ताल पर चले जाते हैं। उनके बकाया वेतन के सवाल का सिविल सर्जन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था।
4: ये अनावश्यक रूप से इस टाइप के लोग बुलाया है सफाई कर्मी। पूरे बोकारो जिला में हमारे यहाँ सफाई कर्मी में केवल सदर अस्पताल के कर्मी लोग ही जो 30-32 तो हैं वही लोग इस टाइप में हैं। वो भी दो महीना का इन लोगों का भुगतान बाकी था, जिसमें कि मैंने प्रेशर दिलवा के आउटसोर्स कंपनी से एक महीना दिलवाया और एक महीना का और प्रोसेस में आजकल में वो भी चला जाए। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमेशा स्ट्राइक। आप याद कीजिए पूर्व में क्या था, 4-5 महीने तक भुगतान नहीं होता था, तो वो भी स्थिति नहीं है। मेरे आने के बाद एकदम स्ट्रीमलाइन हो गया, सबका ईपीएफ ईएसआई जितने तरह का कार्ड होते हैं आई कार्ड सब बन गया, सब यूनिफॉर्म में ड्रेस सब मिल रहा है।
1: बोकारो में अभी तक मानसून की बारिश नहीं होने से जिले के किसानों को सूखा पड़ने का डर सता रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
5: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण सुनने के लिए आए शामिल होते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।

1947 में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया।

हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबाइलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मार सकता है।

जी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को निस्त नाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार, आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलाल आबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों हवामहल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: अरे लड़ी नजरिया लड़ी।
1: आज तो बड़े बाबू भाई, वाह क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं,
0: देखो चौबे, औकात में रहो।
1: क्या बात है, आज आपके होठों पर आशिकी नगमा।
0: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
1: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
0: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं।
1: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
0: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
1: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
0: आशिकी नगमा कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो।
1: भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
0: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाबजादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
1: हाँ ये बात तो है। नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू।
2: अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है। बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
0: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई।
2: बात बाद में, पहले तो हो जाए।
0: हो
2: हाँ
0: जाए हाँ, यहाँ मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए हाँ।
1: खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
2: चक्कर, हसीना का चक्कर, तो ये बात है। अमा भाई, आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
0: ओफो,
2: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
0: अरे अरे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है, यहां तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
1: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
0: अरे खजूरी, तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला।
2: थोड़ा सा बड़े बाबू, लंच करवाना पड़ेगा।
0: ए,
2: हाँ
0: ए, दे, दे, देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए।
2: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम, हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
1: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं, जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे। सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
0: हाँ, जब
1: हाँ
0: दर्द होगा तब देखेंगे।
2: अच्छा चोबे, ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का।
1: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
0: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या।
2: नहीं तो।
0: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
2: हाँ, और क्या।
0: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा, अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
2: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर।
0: अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
2: जब आप गाना गा रहे थे।
0: गा नहीं, गुनगुना रहे थे।
2: हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ।
0: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूं कुछ नहीं हो रहा था।
2: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
0: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
2: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की।
0: ओफो,
2: देखिए देखिए, परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
0: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
2: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
0: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
2: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
0: आपने मुझे बुलाया साहब?
3: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो। डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
0: धन्यवाद साहब।
3: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
0: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
3: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
0: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
3: यू ही फॉर जनरल नॉलेज।
0: साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 48 वर्ष।
3: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे।
0: जी आपकी मेहरबानी से।
3: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
0: जी मैं कुछ समझा नहीं।
3: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर। माजरा क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए।
0: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूं। आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या, बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
3: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी, बताओ भी।
0: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
3: फिर क्या हुआ?
0: फिर मन में उमंगे
3: पतंगे,
0: नहीं साहब उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।

0: फिर कुछ नहीं साहब।
1: ओफो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
0: साहब साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है। मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं नहीं खुशबू महसूस होने
1: फिर
0: लगी।
1: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
0: हाँ हाँ ठीक है।
1: नहीं, पैर कुर्सी के नीचे।
0: सॉरी सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
1: कैरी ऑन।
0: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
1: ओहो बताइए ना,
0: किसी परी के साथ उड़ रहा हूं, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूं।
1: क्या बातें कर रहे हो?
0: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
1: ओहो आप भी किस मौके पर कहां की बात ले बैठे, कहां गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
0: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
1: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
0: ओह सॉरी सर।
1: और वो गाना?
0: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अरे उठो भी, क्या सोते हुए लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो? 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
0: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
2: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनू किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
0: तुम तो जानती ही हो मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ।
2: हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
0: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
2: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
0: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान।

हो जाने की जस्बी की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

0: अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है।

0: श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में

0: गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मौके का समंदर बनाना है। वजीर आजम मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इख्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, नेज जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मौके का एक समंदर बनाता है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में यूपीआई का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशेल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हेरमिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तईं अपने अहद का एदा किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की में क्यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वजीर आजम मोदी को यह पुरवकार एजाज दिया। वजीर आजम को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क्यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात नीज नीलमू मईशत आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई समंदरी वसाइल के पायदार बंदोबस्त और स्माल आईलैंड तरक्की पजीर ममालिक की तरक्याती ख्वाहिशात के तईं उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए दिया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज को उन तमाम ममालिक से मंसूब किया जो माहौलिया

0: तहफ्फुज के लिए अहदबंद हैं, नेज आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। बाद में दिन में वजीर आजम मोदी ने सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और सेशेल्स दोनों एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तरक्की मजीद शमूलियाती हो और जहां बैनुल अक्वामी इदारे हम असर हकायक की अक्कासी करते हों। उन्होंने आलम जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के तई अपने अहद का इरादा किया।
1: सेशेल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी रियालिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत का विजन महासागर के नजरिए में पिन्हा है, जो इस बात को तस्लीम करता है कि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे पर मुनहसिर है।
1: वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है।
0: वजीर आजम ने कहा कि कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम होने की हैसियत से सबके सामने खड़ा होना एक खसूसी एजाज है। इससे कबल दिन में सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजने के लिए उन्होंने सेशेल्स के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी मशरकी अफ्रीका के इस जजीरा नुमा मुल्क के 3 रोजा दौरे पर गुज़िश्ता रोज विक्टोरिया पहुंचे हैं। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह समेत बहुत से मरकजी वज़रा ने माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के दरमियान बातचीत में बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों का अहाता किया गया। विक्टोरिया में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने सेहत, तालीम, सलाहियत साजी, डिजिटल तब्दीली, पायदार तरक्की, समाजी बुनियादी ढांचे, काबिले तजदीद तवानाई, समंदरी तहफ्फुज और दिफा के शोबों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वजीर आजम ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। سعودی عرب میں آج ملک کی تیل کمپنی آرامکو کا ایک ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے مغرب میں خلیج کے

0: भारत को जीतने के लिए 155 रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: भागने का मौका मिले।
2: भारतीय देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार, जी कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

0: रोजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।

a la garda Oradia. अरे गर्दा उड़ा दिए बेटा, गर्दा उड़ा दिए।

28 जून साल 1971, दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था।

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओं, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। यह यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलें कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक के स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद डेल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओ, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नीलबटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर। देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते नगमे।

तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं न कभी यादों में तब्दील होते हैं, वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली बिसरी याद।

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए इस कार्यक्रम के तहत सुनते हैं एक ही फिल्म के गाने। फिल्म का नाम है सुर।

सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ। इस फिल्म का अभी ये पहला गाना आपने सुना। आवाज़ें थीं लकी अली और सुनिधि चौहान की। आइए सुने इसे फिल्म के शेष नगमे।

ये आवाज़ थी लकी अली की। अभी आप सुन रहे थे सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ, इस फिल्म के कुछ गाने। और इसी के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास-पास नहीं, साथ-साथ चलें. Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honor on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honor to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or Aabha ID. The Anti-Corruption Branch, ACB, Delhi has arrested the then Director General Health Services, DGHS, Dr. Vatsala Agarwal and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, CPA, Neeraj Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables and medical equipment. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram, SSBSK, during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi tomorrow. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorn Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. In the ICC Women's T20 World Cup, Australia defeated India by 6 wickets in their final Group A match at Lord's, London. Earlier, opted to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Australia scored 172 runs for 4 wickets in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम